0: आइए श्रोताओं, सभा का शुभारंभ करते हैं आज के अनमोल विचार से।
1: विश्वास और श्रद्धा का मिश्रित नाम है आस्था। ये संकल्पों को कर्मों की चरण देती है, चरणों में गति की निरंतरता भरती है। आस्था कर्म को उत्सव और कठिनाई को उल्लास बना देती है। आस्थावान व्यक्ति विघ्न बाधाओं को मुस्कुराते हुए स्वीकारता है। वह बुझे मन से इरादों का बेगार नहीं ढोता, बल्कि जीवन यात्रा में पग पग पर उल्लास उत्सव मनाता हुआ जीवन प्रदीप में नवीन इरादों का तेल डालकर नवीन कर्मों के ज्योति जलाता हुआ लक्ष्य की ओर बढ़ता है।
0: ये था आज का हमारा अनमोल विचार और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रभाती वंदना। शुरुआत कर रहे हैं मातृ वंदना से।

0: श्रोताओं, इसके साथ ही समाप्त होता है प्रभाती वंदना कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है अग्री टिप्स।
1: आइए आज हम कुछ बातें करते हैं मुर्गियों में बौनापन का रोग यानी स्टंटिंग सिंड्रोम के बारे में। ये मुख्यतः मांस वाली मुर्गियों यानी ब्रॉयलर में होता है, जिससे

0: मुर्गी की बढ़वार रुक जाती है तथा ज्यादा दाना खाने के पश्चात भी मुर्गी का वजन नहीं बढ़ता। मुर्गियों में 1 से 2 सप्ताह की उम्र में इस रोग के लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। बौनेपन का रोग मुख्य रूप से मांस वाली मुर्गियों का रोग है, जिससे प्रभावित मुर्गियों का वजन कम रह जाता है और वे छोटे आकार की रह जाती हैं। प्रायः देखने में आया है कि 5 से 20% तक मुर्गियां छोटी रह जाती हैं। प्रभावित मुर्गियों के पंख भी बिखरे हुए रहते हैं तथा इन मुर्गियों को दस्त की समस्या रहती है। मुर्गियों की टांगें भी कमजोर रह जाती हैं। अपच तथा शोषण की कमी से मुर्गियों का मल स्लेटी रंग के सीमेंट जैसा हो जाता है, जो कि मल द्वार के चारों ओर चिपक जाता है और ऐसा आभास होता है कि मल द्वार पर सीमेंट लगा हो। इस दशा को पेस्टी वेंट कहते हैं, जो मुर्गियों के बौनेपन का एक प्रमुख लक्षण है। प्रभावित मुर्गियों की टांगों का रंग भूरा होने लगता है और वे कमजोर हो जाती हैं। मुर्गियों के मल में अपच दाना दिखाई देता है, जिससे अधिक दाना खाकर भी मुर्गियों का वजन कम ही रहता है। प्रभावित मुर्गी की कलगी व गले के वेटल भी भूरे रंग के हो जाते हैं। मुर्गियों में खून की कमी के लक्षण तथा म्यूकस झिल्लियां हल्के भूरे व पीले रंग की दिखाई देती हैं। किसान भाइयों, प्रभावित मुर्गी की मांसपेशियां सूखने लगती है, जिससे मुर्गी और कमजोर हो जाती है। इस रोग में मुर्गी का वजन प्रथम 2 सप्ताह में ही कम होने लगता है तथा 4 सप्ताह तक ये सबसे अधिक अंतर वाला होता है। 4 सप्ताह के पश्चात प्रभावित मुर्गी रोग से ठीक होने लगती है, लेकिन फिर भी उसका वजन सामान्य से कम ही रहता है। बौनेपन का रोग वैसे तो कई कारणों से हो सकता है, मगर इसमें विषाणु की मुख्य भूमिका होती है तथा ये एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी में फैलकर अधिक नुकसान पहुंचाता है। अगर मुर्गियों के 2 बार रखने के बीच के समय में सफाई पर उचित ध्यान दिया जाए, तो इस बीमारी को कम करने में काफी मदद मिलती है। इस रोग का निदान मुर्गियों के विषय में जानकारी, हैचरी से संबंधित जानकारी, लक्षण व शव परीक्षण द्वारा ही किया जा सकता है। आमतौर पर बौनेपन का रोग किसी फार्म पर 5 से 20% तक मुर्गियों को प्रभावित कर सकता है। अगर पता चलते ही प्रभावित मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों के समूह से अलग कर दिया जाए, तो रोग को फैलने से रोका जा सकता है। किसान भाइयों, इस रोग से बचाव के लिए कुछ एक बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चूजे खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चूजों के माता पिता यानी ब्रीडर स्टॉक में रोग के विषाणु ना हो। इसके लिए मुर्गियों के रक्त का समय समय पर परीक्षण करते रहना चाहिए। अंडे देने वाली बड़ी मुर्गियों में टांगों के जोड़ों की सूजन देखी जाती है, जो रियो विषाणु से होती है। इन मुर्गियों से अंडे के यॉक से संक्रमण चूजों में चला जाता है। हैचरी में सफाई की उचित व्यवस्था समय समय पर करते रहना चाहिए। हैचरी से भी रियो विषाणु यानी इस रोग का जो विषाणु होता है वो चूजों तक पहुंच सकता है। किसान भाइयों, मुर्गी फार्म पर सफाई की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। विशेष रूप से मुर्गी रखने के 2 बैच के बीच संक्रमणहारी दवाओं से मुर्गी फार्म की सफाई करनी चाहिए और 2 मुर्गियों के बैचों के बीच कम से कम 30 दिन का अंतर अवश्य रखना चाहिए। मुर्गियों की बढ़वार पर भी नज़र रखनी चाहिए और जैसे ही पता चले कि झुंड में मुर्गियों का वज़न यानी कुछ मुर्गियों का वज़न कम हो रहा है या उनकी बढ़वार नहीं हो रही है, तो ऐसी मुर्गियों को झुंड से अलग कर देना चाहिए ताकि संक्रमण आगे न बढ़ पाए। रियो विषाणु यानी बौनेपन का जो कारक होता है, इसके खिलाफ टीका भी उपलब्ध है। इसके लिए आप पशु चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं।
1: आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से अभी आप सुन रहे थे अग्री टिप्स। इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों

0: नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसका विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिन फिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल ध्यान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। वहीं बुरंडी के राष्ट्रपति एविरिस्ते नादियने शिमिए अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। यह निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. The 18th BRICS Summit is set to begin at Bharat Mandapam in New Delhi today. The two-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. During the

13 सितंबर को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से यात्रा कर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी करेगा। एमवी भारत सीमा की अगली यात्रा होगी इन्हीं स्थानों के लिए परसों 14 सितंबर रात्रि 8 बजे और श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी अगले दिन 15 सितंबर दोपहर बाद 2 बजे। एमवी कैमल बे कल 13 सितंबर को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा और कल ही रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी। एमवी कैमल बे की अगली यात्राएं होंगी लिटिल अंडमान के लिए 15 सितंबर को सुबह 10 बजे, 18 सितंबर को रात्रि 9 बजे और 20 सितंबर को सवेरे 9 बजे। जलियान नालंदा 15 सितंबर को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैमल बे की यात्रा करेगा और 17 सितंबर को कैमल बे से चलकर ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। जलियान नालंदा की अगली यात्राएं होंगी इन स्थानों के लिए 22 और 29 सितंबर को। अब सुनिए आज होने वाले यात्राओं की सूचना। एमवी स्ट्रेट आइलैंड आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा करेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा। स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी आज ही दोपहर बाद 2:30 बजे। एमवी रानीचंगा आज दिन के 11:30 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा। शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी आज ही दोपहर बाद 3:30 बजे। एमवी जॉली बॉय आज दोपहर बाद 2:30 बजे शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। जलियान श्री विजयपुरम से चलेगा और आज ही शाम 4:30 बजे श्री विजयपुरम की वापसी करेगा शहीद द्वीप से।

आज शाम 5 बजे एमवी रानी चंगा श्री विजयपुरम से स्वराजदीप की यात्रा करेगा और कल सवेरे 5:30 बजे स्वराजदीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी। और अब कल होने वाली यात्राओं की सूचना। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से लॉन्ग आइलैंड और स्वराजदीप होते हुए रंगत के लिए रवाना होगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। कल सवेरे 6:15 पर एमवी रानी चंगा श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा करेगा और कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप की वापसी करेगा। और एमवी जॉली बॉय कल सवेरे 6:15 पर स्वराज द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा। जलियान श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। ये था जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। सुनते हैं इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

नमस्कार दोस्तों, इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम में आज का विषय है आवाज़। दोस्तों, हमारी जिंदगी में आवाज़ का महत्व बहुत गहरा है। जन्म के बाद बच्चे की

पहली आवाज से लेकर किसी अपने के आखिरी शब्दों तक आवाज हमारी यादों का हिस्सा बनती रहती है। कभी किसी की आवाज हमें हिम्मत देती है, कभी किसी की आवाज हमारे मन को सुकून देती है, और कभी कोई आवाज हमें अपनेपन का एहसास कराती है।

दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। आसपास लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन दिल किसी एक खास आवाज़ को सुनने के लिए तरसता रहता है। ऐसे समय में किसी अपने की आवाज़ उम्मीद

उम्मीद बन जाती है। दूरियां चाहे कितनी भी हो, एक आवाज़ हमें यह एहसास दिला सकती है कि कोई है जो हमें याद करता है और हमारी परवाह करता है।

दोस्तों, कई बार हम दुनिया की बातें सुनते सुनते अपने दिल की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, लेकिन जब हम कुछ पल रुककर अपने मन की सुनते हैं तो कई सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। क्योंकि दिल की आवाज़ हमेशा शब्दों में नहीं होती, कभी वह एक एहसास होती है, एक याद होती है या किसी अपने की मौजूदगी का एहसास होती है।

0: दोस्तों, इसी के साथ दीजिए कार्यक्रम से इजाजत।
1: इंद्रधनुष।

अभी आप आवाज शीर्षक पर केंद्रित हमारा इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी रितिका मिंज। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरित मानस गान की 359वीं कड़ी।

आज वो शुभ दिन शुभ घड़ी आ पहुंची है जब वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है। एक अनुपम दृश्यावली की रचना हो रही है।

अभी आप रामचरितमानस गान की 359वीं कड़ी सुन रहे थे। स्वर दिया था महेंद्र कपूर और साथियों ने, और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम है, 6:40 में है। सुनते हैं वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देश गान।

अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत संवेद स्वरों में देशगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय हुआ है सवेरे के 6:50। अब सुनिए मौसम का हाल। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जन सेवाओं को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया गया है कि द्वीपों के एक दो भागों में गरज के साथ बिजली चमकेगी और हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और उधर मछुआरों को चेतावनी में बताया गया है कि खराब मौसम के कारण अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। इसलिए मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान

में बताया गया है कि द्वीपों के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी या फिर गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था आज का मौसम का हाल। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देशरागिनी, जबकि इसी समय FM 100.9 MHz पर सुना जा सकता है विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर होगा हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। विषय रहेगा कुपोषण की रोकथाम में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन की भूमिका। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर मानविका दत्ता, मेडिकल ऑफिसर होम्यो आयुष हॉस्पिटल श्री विजयपुरम। श्रोता अपने सवालों के साथ हमसे जुड़ने के लिए डायल कर सकते हैं 03-3192-232-558। सुगम संगीत के तहत 8:30 पर फनकार होंगे शब्बीर कुमार और जगमोहन। सवेरे 9 होगा कार्यक्रम तराने सुहाने। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाएंगे TR महालिंगम का कर्नाटक शैली में बांसुरी वादन। सुबह 10 होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश। कार्यक्रम गीत गुंजन और गीत अतीत हम प्रसारित करेंगे दिन के 11:30 पर। दोपहर 12 का समय रहेगा तेलुगु कार्यक्रम का, जिसमें विश्व प्राथमिक उपचार दिवस पर चर्चा और फिल्मी गीत होंगे। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा मेहदी हसन, मोहम्मद अजीज और मनहर उदहास को। और 1:10 पर व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी, जिसमें पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक और 3:30 पर कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे प्राइमरी चैनल पर शाम 4 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें होंगी सूचनाएं और लोकप्रिय गीत। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, 4:40 पर कार्यक्रम विवरण और 4:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे शाम 5, जिसके तहत सुनेगा विश्व प्राथमिक उपचार दिवस पर चर्चा और गीत। बंगला में शाम 5:30 पर आप सुन सकते हैं विश्व प्राथमिक उपचार दिवस पर चर्चा और युगल गीत। किसान वाणी के तहत श्रीमती ज्योत्सना से की गई बातचीत का विषय रहेगा महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता। संध्या 6:30 पर होगा कार्यक्रम बुजुर्ग नागरिकों के लिए, जिसमें आप सुनेंगे श्री रतनलाल के साथ ली गई भेंटवार्ता, सुनहरी यादों का सफर। 6:45 पर सुनेगा शिव कुमार वशिष्ठ की लिखी झलकी बदले हुए चेहरे। 7:20 पर होगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवाणी में 7:30 पर कार्यक्रम ऐसा भी होता है। रात्रि 8 कार्यक्रम चित्रपट संगीत, 8:30 पर रोजगार समाचार और गौरवगान होंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात्रि 10 होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत अश्विन एम दलवी का सुर बहार। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम है। 6:55 होने को हैं अब संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई। आज सवेरे 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता रही।

93% और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्रीपचीपुरम का अधिकतम तापमान रहा 32.2 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय हुआ सवेरे 5:09 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:22। अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार हवाई उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे श्रीविजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 श्रीविजयपुरम से दिन के 11:40 पर दिल्ली के लिए अपनी उड़ान संचालित करेगा।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: जन सूचनाएं समाप्त हुई। श्रोताओं, सवेरे के 7:05 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। पीएम किसान मानधन योजना के 7 वर्ष पूरे, छोटे और सीमांत किसानों को 3,000 रुपये की पेंशन देने का है प्रावधान। द्वीप समूह में जल संकट को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया है और पर्यटन निदेशालय की ओर से विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में प्रचार वीडियो व रील प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है।

इस उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन 2026 भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री आज सम्मेलन के बाद ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। पिछले 7 वर्षों में पीएम किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरी है। ऑल इंडिया किसान सभा का 6ठा अंडमान निकोबार राज्य सम्मेलन हाल ही में डिगलीपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में नई राज्य समिति का गठन करते हुए डॉ. गोरांग मांझी को अध्यक्ष, अविराम मजुमदार को सचिव और केपी पॉल को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव भी चुने गए। तेलंगाना में 15 से 18 नवम्बर तक होने वाले ऑल इंडिया किसान सभा के 36वें अखिल भारतीय सम्मेलन में डॉ. गोरांग मांझी, अविराम मजुमदार, एसआर मृघा और दिलीप कर्माकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से कल कॉलेज छात्रों और आम जनता के लिए 5 किलोमीटर की राज्य स्तरीय मैराथन रेड रन का आयोजन किया गया। दौड़ में द्वीप समूह के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों सहित 150 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया। इस दौड़ को मुख्य अतिथि संध्या किस्पोटा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक डॉ. सुब्रता साहा ने एचआईवी तथा एड्स के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। कॉलेज स्तर के पुरुष और महिला दोनों वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त विजेता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की ओर से आयोजित की जाने वाली राष्ट्र स्तरीय रेड रन में भाग लेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, कलकत्ता उच्च न्यायालय निर्देश और विश्व पर्यटन दिवस। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को औसत वार्षिक 3,100 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त होने के बावजूद जलवायु परिस्थितियों सहित विभिन्न कारणों से अक्सर जल संकट का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच ने द्वीप समूह में पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रशासन द्वारा पेयजल संकट के मुद्दे की जांच करने और इसके समाधान के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है। इस विशेषज्ञ समिति में प्रशासन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केंद्रीय भूजल बोर्ड, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, आईआईटी खड़गपुर, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि व विशेषज्ञ शामिल है। आम जनता, तकनीकी विशेषज्ञों, संस्थानों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, नागरिक समाज संगठनों और अन्य हितधारक द्वीप समूह में पेयजल संकट को दूर करने के लिए अपने सुझाव 15 दिनों के भीतर अंडमान लोक निर्माण विभाग के मेल पर भेज सकते हैं। पर्यटन निदेशालय की ओर से 27 सितंबर को पर्यटन को नया रूप देने के लिए डिजिटल एजेंडा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस समारोह के उपलक्ष्य में पर्यटन निदेशालय द्वीप समूह के पर्यटन आकर्षणों, अनुभवों, संस्कृति

सुबह के समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय के साथ दो दिनों तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे।

और विरासत को नवीन डिजिटल सामग्री के माध्यम से बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रचार वीडियो व रील प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। प्रतिभागी 1 से 3 मिनट की अवधि के लघु पर्यटन प्रचार वीडियो या रील बना सकते हैं, जिनमें द्वीप समूह की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित किया गया हो। प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। सभी इच्छुक प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियां 23 सितंबर को शाम 4 बजे तक फोटो यूनिट iptdepartment@gmail.com के माध्यम से जमा कर सकते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशु चिकित्सा औषधालय मंगलुटान की ओर से कॉफी बगीचा स्थित बकरी फार्म में वैज्ञानिक बकरी पालन पर किसान पाठशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्यारी और कृषि विज्ञान केंद्र के विषय विशेषज्ञों ने किसानों को वैज्ञानिक बकरी प्रबंधन पद्धतियों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा बकरियों के लिए कम लागत वाले और पौष्टिक आहार संसाधन की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रतिभागी किसानों को पशुधन इनपुट के साथ चारे के पौधे भी वितरित किए गए। कन्यापुरम में एसटी लाइन की सफाई तथा क्षतिग्रस्त एलटीएबीसी के बदलाव का कार्य किए जाने के कारण आज बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। कटौती सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। प्रभावित क्षेत्रों में कड़काचांग, मॉडर्न विलेज, पड़ाक बगीचा, मनारघाट, मलापुरम, राइटम्यू, शोलबे पंचायत क्षेत्र, फरारगंज साइट कार्यालय और कन्यापुरम शामिल है। यह कार्य मौसम पर निर्भर रहेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दिसंबर 2026 की सत्रांत परीक्षा 25 नवंबर से शुरू होगी। पात्र छात्र 30 सितंबर तक छात्र समर्थ पोर्टल के माध्यम से परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके बाद 1100 रुपये विलंब शुल्क के साथ 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। छात्रों से परीक्षा फॉर्म भरने से पहले इग्नू की वेबसाइट पर अपना पिछला परीक्षा परिणाम जांचने को कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए छात्र इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। चिन्मय मिशन की ओर से 14 से 18 सितंबर तक 5 दिवसीय श्री गणेश पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 14 सितंबर को सुबह 8:30 बजे श्री गणपति होमम विग्रह स्थापना पूजा का कार्यक्रम रखा गया है। 18 सितंबर को मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। पीएम किसान मानधन योजना के 7 वर्ष पूरे, छोटे और सीमांत किसानों को 3000 रुपये की पेंशन देने का प्रावधान। द्वीप समूह में जल संकट को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया है। और पर्यटन निदेशालय की ओर से विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में प्रचार वीडियो व रील प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मिडवेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय हुआ है सवेरे के 7:15। पेश कर रहे हैं कार्यक्रम देश रागनी।

नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश रागनी यानी वो रागनी जिसमें तिरंगे के तीन रंग घुल जाते हैं, वो धुन जो सीधा दिल से निकलकर देश की आत्मा तक पहुंचती है। इस विशेष कार्यक्रम में आप सुनने वाले हैं उन गीतों की सौगात जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस भी किए जाते हैं। जब शब्द कम पड़ते हैं तो गीत बोलते हैं, और जब बात वतन

अगला गीत केवल गीत नहीं बल्कि ये गीत हमें एहसास दिलाती है कि ये वही धरती है जहाँ आस्था की कई धाराएं एक साथ बहती हैं। कहीं मंदिरों की घंटियां हैं, कहीं मस्जिदों की अजानें, और इन्हीं सुरों के बीच पलती है एकता की सबसे खूबसूरत धुन।

सीमा पर खड़ा जवान हो या खेत में पसीना बहाता किसान, या फिर अपने सपनों से देश को आगे बढ़ाता युवा, हर कोई इस देश की ताकत है। इसी जज्बे को आवाज़ देता अगला गीत।

देशरागनी कार्यक्रम का हर सुर हर गीत हमें जोड़ता है एक नाम से, और वो नाम है भारत। और जब देश पर गर्व करने की बात आती है तो आवाज़ अपने आप ही बुलंद हो जाती है। देशभक्ति हर दिन का कर्तव्य है, हर दिन का एहसास है और हर सांस की जिम्मेदारी है। देशरागनि हमें याद दिलाती रहेगी कि सबसे पहले हम भारतीय हैं और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। अब इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ इस उम्मीद के साथ कि देश के नाम हम सबका दिल धड़कता रहेगा और सुरों में वतन बसा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।

0: एम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफ एम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। सुनते हैं हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
1: Hello, doctor.

0: नमस्कार, सुप्रभात। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ जीवन का आधार होता है सही पोषण। हर साल सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद पौष्टिक भोजन और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसलिए आज हमने इस कार्यक्रम में आपके लिए विषय चुना है, कुपोषण की रोकथाम में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन की भूमिका। तो श्रोताओं, आज हम जानेंगे कुछ ही देर में कुपोषण क्या है, इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का थीम क्या है, प्रोटीन की भूमिका और प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या हैं, और भी बहुत सारी जानकारियाँ। विषय से जुड़े सवालों और आपके जिज्ञासा को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में आमंत्रित मेहमान हैं मेडिकल ऑफिसर आयुष हॉस्पिटल श्री विजयपुरम में कार्यरत डॉक्टर मानविका दत्ता। डॉक्टर साहिबा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, विषय से जुड़े सवालों के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं 03192-232-5588 पर। नंबर एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, 03192-232-558। और अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहिबा, हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि हर साल पूरे सितंबर महीने को पोषण माह में के रूप में मनाया जाता है, तो इस साल राष्ट्रीय पोषण माह 2026 की थीम क्या है?
1: जी हाँ, सितंबर का ये पूरा महीना राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में प्रत्येक वर्ष देश भर में मनाया जाता है। नौवीं राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9 सितंबर को किया गया
0: जी।
1: और इसी क्रम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी राष्ट्रीय पोषण माह राज्य स्तर पर सोशल वेलफेयर निदेशालय के तत्वावधान में सभी लाइन डिपार्टमेंट के साथ शुभारंभ 9 सितंबर को ही किया गया
0: जी।
1: एक्चुअली पोषण माह को जन आंदोलन के रूप में द्वीप समूह में मनाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, ताकि इस प्रयास से सभी द्वीपवासियों, खास करके हमारे महिलाओं, बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और समग्र कल्याण में योगदान दिया जा सके
0: जी।
1: और इस बार का थीम आपने पूछा, हमारे आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी
0: जी।
1: और इसके अंतर्गत 5 प्रमुख सब थीम्स हैं। पहला है डाइट डाइवर्सिटी एडिक्वेट प्रोटीन
0: जी,
1: यानी डाइट डाइवर्सिटी यानी आहार विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन,
0: पर्याप्त मात्रा,
1: जो आज की जो हमारी टॉपिक है
0: जी।
1: दूसरा जो है सब थीम, आंगनवाड़ी केंद्र पर ताज़ा एवं गर्म पका हुआ भोजन
0: जी,
1: इस पर फोकस किया गया है
0: जी।
1: और तीसरा है न्यूट्रिशन एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट
0: जी।

0: पर्याप्त पौष्टिक आहार खाने लेने के अलावा भी बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग, एक बातचीत करना, ये अर्ली स्टिमुलेशन इसे कहते हैं, ताकि मस्तिष्क भी उसकी ग्रोथ
1: विकास भी
0: विकास
1: बराबर
0: हो
1: हो
0: बराबर हो। और चौथा है सब थीम प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना।
1: जी
0: इसमें कुछ कैश प्राइज ट्रांसफ़र किया जाता है गर्भवती महिला और माओ के लिए।
1: जी
0: इसके बारे में अगर जानकारी लेना है तो फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं,
1: समाज कल्याण निदेशालय से संपर्क करना
0: जी,
1: है। जी
0: और इसमें पहले जैसे 5,000 रुपीज़ फर्स्ट जीवित बच्चे के लिए दिया जाता है
1: जी।
0: और दो किश्तों में, और फिर फर्स्ट बेबी के लिए, और सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए 6,000 रुपया अगर जिसके जो सालाना आय 8 लाख से कम हो उनके लिए सिर्फ प्रावधान है।
1: जी तो आपका कहने का मतलब है कि सब थीम में सिर्फ हमारे टॉपिक जैसा आज कुपोषण की रोकथाम में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन की भूमिका के अलावा भी बहुत सारी थीम है जिसको इस बार राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में हम लोग मनाएंगे।
0: जी
1: डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आज का हमारा विषय है कुपोषण की रोकथाम में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन की भूमिका, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आहार विविधता को हम कैसे समझेंगे या ये क्या है, डाइट्री डाइवर्सिटी का क्या मतलब है?
0: जी हाँ, डाइट्री डाइवर्सिटी आहार विविधता यानी इसका अर्थ है विभिन्न खाद्य समूह से विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना
1: जी,
0: ताकि शरीर को जो आवश्यक सभी पोषक तत्व, विशेषकर सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके, यानी वैरायटी ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो केवल कैलोरीज पर ही निर्भर ना करें, सिर्फ कैलोरीज की मात्रा पर ध्यान ना देकर हमें चाहिए कि भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाएं और उसमें जो मौजूद एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म जो
1: विटामिन और मिनरल्स
0: जैसे कि विटामिन मिनरल्स, इस पर जोर देना चाहिए।
1: जी हमारे दैनिक जीवन में खासकर बच्चों के लिए आहार विविधता क्यों महत्वपूर्ण है?
0: जी आहार विविधता महत्वपूर्ण है क्योंकि विविध एवं संतुलित आहार शरीर की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता है उसे पूरा करने में सहायता करता है। इसे समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं कि
1: बिल्कुल।
0: दो प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी बड़ी मात्रा में जो ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा जो हम लेते हैं अपने आहार में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन जिससे हमारी जो टिश्यूज़, हमारे मसल्स की जो ग्रोथ और उसकी रिपेयर वर्क में काम करता है, और फैट जिससे हमें ऊर्जा यानी वसा जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और दूसरा जो समूह है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व जो बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है हमारे
1: जी।
0: और जैसे कि विटामिन्स मिनरल्स, विटामिन हमें हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, और मिनरल्स जो है आयरन, जिंक, कैल्शियम, आयोडीन। आयरन जैसे इसे इसकी जो कमी के लिए अनीमिया हो सकता है, और आयोडीन की कमी से हमारे ब्रेन डेवलपमेंट रुक सकता है, और जिंक अगर कम हो तो बार बार इन्फेक्शंस हो सकता है, तो ये सारे तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। और भारत में ये एक गंभीर चुनौती है, सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी एक चैलेंज है हमारे भारतवर्ष में। इससे बच्चों की जो अच्छी जो वृद्धि, ब्रेन डेवलपमेंट, रोगों से लड़ने की क्षमता और लंबे समय तक जो अच्छे स्वास्थ्य में मदद मिलती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हम तो कैलोरीज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पेट भर जाता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छूट जाता है, इससे ये परेशानी होता है। और यही इसके वजह से ही जितनी मेल न्यूट्रिशंस वगैरह जो हम बच्चों में देखने को मिलता है। और एक टर्म इस बार यूज़ किया है, हिडन हंगर। ये एक स्थिति है जब पेट तो भरता है पर शरीर में जो विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है, इससे क्या होता है अनीमिया जैसे मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, इम्यूनिटी घट जाता है, बार बार जैसे मैंने कहा बार बार इन्फेक्शंस होने लगता है, और इससे ब्रेन डेवलपमेंट में रुकावट हो जाती है।
1: जी तो कहने का मतलब ये है कि माइक

0: माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट दोनों ज़रूरी है, लेकिन जहां हम माइक्रो न्यूट्रिएंट को लेते हैं कहीं ना कहीं माइक्रो हमसे छूट जाता है।
1: जी हाँ सही
0: जी जी एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, हम पहले उनको सुन लेते हैं। हेलो
2: हेलो
0: जी, कौन और कहां से बोल रहे हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: गुड मॉर्निंग, मैं संतोष कर्माकर बोल रहा हूँ, प्रेमनगर।
0: जी संतोष जी,
2: रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी हूँ।
0: जी संतोष जी, सवाल क्या है आपका?
2: सवाल ये है कि ये जो पोर्शन है ये सोशल वेलफेयर और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस दोनों कंबाइनली मिलके करते हैं कि अलग अलग करते हैं?
1: जी हाँ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की गाइडेंस में उसकी जो समन्वय से सभी लाइन डिपार्टमेंट्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मिलकर ये कार्यक्रम करते हैं मंथ लॉन्ग का, जैसे 9th से शुरू हुआ है और नेक्स्ट अक्टूबर 10th तक ये
0: चलेगा,
1: कार्यक्रम चलेगा। तरह तरह के कार्यक्रम करेंगे हम, एक साथ मिलकर भी करेंगे, अलग हम आयुष विभाग में हम अलग

0: संतोष कर्माकर बोल रहा हूँ, प्रेमनगर
1: जी। संतोष जी,
0: रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी
1: जी। संतोष जी, सवाल क्या है आपका?
0: सवाल ये है कि ये जो पोर्शन है, ये सोशल वेलफेयर और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस दोनों कंबाइनली मिलके करते हैं कि अलग अलग करते हैं?
2: जी हाँ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की गाइडेंस में उसकी जो समन्वय से सभी लाइन डिपार्टमेंट्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मिलकर ये कार्यक्रम करते हैं मंथ लॉन्ग का। जैसे 9th से शुरू हुआ है और नेक्स्ट अक्टूबर 10th तक ये चलेगा, कार्यक्रम चलेगा। तरह तरह के कार्यक्रम करेंगे हम, एक साथ मिलकर भी करेंगे, अलग हम आयुष विभाग में हम अलग, जैसे हेल्थ कैंप्स वगैरह और कॉम्पिटिशन्स, मेला, ये सारे कार्यक्रम हम करेंगे और साथ मिलकर भी हम करेंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट साथ
1: जी।
0: और एक और प्रश्न है कि ये हमारे पोर्ट ब्लेयर में तो ठीक है, सब परसेंटेज हम लोग सही है ऑलमोस्ट, जो इंटरलैंड है जैसा कि कैंपबेल बे हुआ, कैंपबेल बे से दूर जैसा मार्केट हुआ एज वेल एज माया बंदर हुआ जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे भी आप लोग ये ऑलमोस्ट ये जो वीक करते हैं?
2: जी हाँ, ये मंथ लॉन्ग प्रोग्राम सिर्फ पोर्ट ब्लेयर के श्री विजयपुरम के लिए नहीं है, वो सभी जगह कैंपबेल बे से लेकर कार निकोबार से एवरीवेयर सब जगह हम ऐसे ही कार्यक्रम करते हैं।
0: धन्यवाद, थैंक यू
1: जी। संतोष जी, ये कार्यक्रम पूरा राष्ट्रीय पोषण माह जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूरे एक महीने मनाया जाता है। तो अभी आपकी जिज्ञासा खत्म हो गई होगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहिबा, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन को एक ही सब थीम या उप विषय के रूप में एक साथ क्यों रखा गया है?
2: जी हाँ, आहार विविधता एवं एडिक्वेट प्रोटीन, इसको एक साथ जोड़ा गया है इस बार की जो थीम में, ताकि लोग केवल पेट भरने के लिए खाना ना खाए बल्कि ऐसा पौष्टिक भोजन ले जो बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हो। यानी एडिक्वेट प्रोटीन हमें याद दिलाता है पर्याप्त प्रोटीन भी सुनिश्चित करें, और विविध आहार हमें बताती है विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ खाए, यानी थाली में वैरायटी भी हो और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा भी हो। उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा अगर चावल रोटी सब्जी और फल अलग अलग खा रहा है, आहार विविधता है, लेकिन अगर दूध अंडा मछली मीट नट्स बीज जैसे प्रोटीन सोर्स बहुत कम है तो प्रोटीन पर्याप्त नहीं हो सकता
1: जी।
2: दूसरी ओर कोई पर्याप्त प्रोटीन तो ले रहा है लेकिन फल सब्जियां कम ले रहा है, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी हो सकती है। तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा
1: जी,
2: प्रोटीन ज़्यादा लिया और हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन मिनरल्स को कम लिया, इसके एक सामंजस्य बनी रहनी चाहिए, एक बैलेंस, इसे कहते हैं बैलेंस डाइट
1: जी। डॉक्टर साहब, इतनी देर में हमने जाना कि आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन की ज़रूरत हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि कुपोषण क्या है और आहार विविधता कुपोषण की रोकथाम में और उसे दूर करने में किस प्रकार मदद कर सकती है?
2: जी हाँ, कुपोषण केवल कम भोजन खाने से ही उसे हम कुपोषण नहीं कहेंगे
1: जी।
2: जब शरीर को आवश्यक मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल तथा अन्य पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, तब हम उसे कहेंगे कुपोषण, या इन पोषक जो तत्व का संतुलन अगर बिगड़ जाए
1: जी,
2: यानी अगर कम हो
1: जी
2: और ज़्यादा हो तब भी, और अगर बैलेंस बिगड़ जाए तब भी हम उसे कुपोषण कहेंगे
1: जी।
2: यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण को हम तीन प्रमुख रूप में हम भाग कर सकते हैं। एक है अल्प भोजन, सॉरी अल्प पोषण
1: जी।
2: दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी
1: जी।
2: और तीसरा है मोटापा
1: जी।
2: अंडर न्यूट्रिशन में आता है बच्चों में उम्र के अनुसार कम लंबा होना। अगर बच्चा, उम्र बढ़ता जा रहा है बच्चे का लेकिन लंबाई कम है
1: जी,
2: तो उसे हम स्टंटिंग कहेंगे जी। हाँ, ये एक मेल न्यूट्रिशन है। अगर लंबाई के अनुसार वजन कम हो तो हम कहेंगे वेस्टिंग
1: जी।
2: और मोटापा जो है वो अधिक

0: वजन होना उसे मोटापा कहते हैं, ये भी एक
1: कुपोषण
0: कुपोषण है।
1: जी
0: आपने पूछा आहार विविधता के माध्यम से कुपोषण को हम किस तरह से
1: कम कर सकते
0: रोक
1: हैं।
0: सकते हैं
1: जी।
0: उसके जो मुख्य कुछ तरीके हैं, सबसे पहले जो है आपको जानना चाहिए कि 6 महीने से 23 महीने के बच्चों के बारे में
1: जी
0: अगर टोटल 8 प्रमुख खाद्य समूह हैं
1: जी
0: जो आपको जान लेना चाहिए
1: जी,
0: और इन 8 समूह प्रमुख जो खाद्य समूह हैं उनमें से अगर 5 समूह अगर हमारे आहार में बच्चों को हम देते हैं तो वो मैल न्यूट्रिशन नहीं होगा।
1: जी,
0: अगर 8 में से 5 से कम हो, आहार में अगर कम हो ये समूह, तो उसे
1: कुपोषण हो सकता है,
0: कुपोषण का शिकार होगा। और अगर 2 से कम या 2 या 2 से कम हो तो वो पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा, तो
1: सीवियरली मालनूट्रिशन।
0: सीवियर, हाँ, और उसके लिए हमें ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत तुरंत पड़ेगी, वरना वो सीवियर मैलन्यूट्रिशन से मृत्यु तक हो सकता है। तो वो जो 8 जो समूह है उसे आप लोगों को बताना ज़रूरी है। पहला है माँ का दूध
1: जी,
0: जो 6 महीने तक बच्चे को देना चाहिए, कंप्लीट ब्रेस्ट फीड, यानी उस समय ना
1: पानी
0: पीना ना देना, ना कोई शहद चटाना,
1: ऊपरी आहार बिल्कुल बंद रहेगा, सिर्फ 6 महीने तक माँ का दूध जाना चाहिए।
0: जी हाँ
1: जी।
0: फिर उसके बाद 6 महीने के बाद फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू होगा
1: जी।
0: तो सेकंड जो प्रमुख खाद्य समूह होगा वो है अनाज, जड़े, कंद, जैसे कि चावल, गेहूं, आलू, शक्करकंद एक्सेट्रा। फिर उसके बाद जो थर्ड जो समूह है वो है दाल, मेवे, बीज, जैसे कि चना, मटर, मूंगफली। और चौथा जो समूह है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध से बना हुआ चीज़ या दूध। पांचवा जो समूह है वो है मांस और मछली
1: जी।
0: और छठा जो है वो है एग्स, अंडे, और सात जो है गाजर, कद्दू, पालक, आम, जो रंग बिरंगे जो सब्जियां हैं, फल है जिसमें हमें विटामिन ए भरपूर मिलती हैं। और आठवां जो ग्रुप है वो है अन्य फल और सब्जियां। तो ये जो 8 जो समूह है इसमें से अगर
1: कम से कम 5 ले लेनी चाहिए,
0: कम से कम 5 होनी चाहिए तब उसे मैल न्यूट्रिशन
1: नहीं होगा,
0: तो ये जानना बहुत ज़रूरी। और सेकंड जो है हिडन हंगर जो हमने कहा जो है कमियों को दूर करना बहुत ज़रूरत है। केवल पेट भरने या अनाज चावल रोटी खाने से ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन विटामिन, जब जैसे पहले मैंने कहा विटामिन और खनिजों की कमी हो जाती है जिसे हम हिडन हंगर कहते हैं, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो हिडन हंगर यानी छिपी हुई भूख, उसे हमें मिटाना है। रंग बिरंगे फल लेना है, सब्जियाँ लेनी है, विटामिन ए से हम उसे पूरा कर सकते हैं और अनीमिया और ब्लाइंडनेस से हम बच्चे को बचा सकते हैं
1: जी।
0: और कुपोषित जो बच्चे हैं उसमें डायरिया होने की संभावना बनी रहती है, निमोनिया
1: जी,
0: और बार बार संक्रमण होना, इसका खतरा बढ़ता
1: रहता
0: जाता
1: है जी,
0: और इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कम होते रहता है। तो अगर विविधतापूर्ण खाना भोजन अगर हम नहीं देते तो वेस्टिंग का शिकार हो जाता है, मैल न्यूट्रिशन हो जाता है
1: जी।
0: तो सही समय पर कॉम्प्लीमेंट्री फूड 6 महीने के बाद तुरंत कॉम्प्लीमेंट्री फूड इनिशिएट करना ज़रूरी है बच्चे को, क्योंकि 6 महीने स्तनपान ले, 6 महीने ओनली ब्रेस्ट फीड हमने कहा, 6 महीने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड बच्चे को देना है वो बहुत जल्दी इनिशिएट करना है, क्योंकि ये जो छोटे में ही बच्चों में जो मस्तिष्क का जो ब्रेन डेवलपमेंट का जो जितने भी नर्व सेल्स है वो द्रुत गति से वृद्धि होती है और ऐन मौके पर हमें उसे जितना हो सके पौष्टिक आहार देना चाहिए। उसमें देरी करेंगे तो नर्व्स में नर्व डेवलपमेंट में दिक्कत हो सकती है, आने वाले कल में इसे उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में स्टंटिंग हो सकती है, आईक्यू लेवल कम हो सकता, इसलिए ये बहुत क्रिटिकल एज है। और स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार जैसे कि नरम सॉफ्ट फूड देना, खिचड़ी, दलिया, ये सारे जो दाल का पानी, सब्जी को मैश करके प्यूरी करके बच्चों को देना है तुरंत। और फिर उसके बाद जो लोकल फूड सीजनल फूड वो तो है।

0: धीरे धीरे देना चाहिए। और जो है बाहर से जो बहुत दिनों तक दूर का खाना, जैसे मतलब मेलन से जो आता है, फल सब्जियां जो आते हैं ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लेट होता है, तो हमें जो है ताजगी नहीं मिलती सब्जियों से।
1: जी
0: तो इसीलिए लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल जो यहाँ पे तैयार होता है, या मौसमी जो
1: फल
0: वेजिटेबल्स एंड
1: सब्जियां
0: फ्रूट्स होते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसे लागत भी कम होती है और ताजगी भी बनी रहती है। और फिर उसके बाद जो अनहेल्दी फूड पर हमें रोक लगाना है, जैसे हमने कहा ओबेसिटी एक माल न्यूट्रिशन है, तो उसे बचना है तो कैलोरीज में कटौती करनी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ज़्यादा ध्यान
1: फोकस
0: देना है।
1: करना है। जी
0: इसलिए बच्चों को जो स्पाइसी फूड जो बाहर से जो हम खरीदते हैं, पैक्ड फूड या जो
1: फास्ट
0: बेवरेजेस
1: फूड
0: मिलते हैं जो टेट्रा पैक्स वगैरह, उससे दूर रहना। चिप्स वगैरह जो बार बार लेते हैं उसका जो सहारा लेना, पिज्ज़ा, इस पर ज़्यादा उसे कटौती करना है। अब बोल नहीं सकते मत खाओ, उसे कम करना है। अनहेल्दी फूड पर रोक लगाएंगे तो ओबेसिटी जैसी मैल न्यूट्रिशन नहीं होगी।
1: जी
0: और बच्चों की जो मैल न्यूट्रिशन से हमारे गर्भवती महिलाएं, हमारे जो लैक्टेटिंग मदर्स के जो भोजन में भी उचित विविधता मिलती है, जैसे कि आयरन होनी चाहिए, फोलिक एसिड होनी चाहिए, युक्त आहार, ये सारी जो आहार होनी चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहिबा, अगला सवाल पे जाएं, उससे पहले हम एक कॉलर ले लेते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी नमस्कार।
2: हेलो
1: जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: फातिमा जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, कौन और कहाँ से
2: मैं
1: बोल रहे हैं?
2: धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, जैसे ये कार्यक्रम एक नंबर पे सुपर है, क्योंकि इससे हर व्यक्ति खाने पीने से ही जुड़ा रहता है। इसमें काफी चीजें आप उनके लाभ के लिए आपने ये बताई जा रही है। मैं दो तीन छोटी छोटी बातें पूछना चाहूंगा। जैसे आंगनबाड़ी में आप बता रहे हैं दलिया और खिचड़ी दी जाती है, तो वो सिंपल दाल और चावल से ही बना के ही देते हैं। इसमें और क्या मिला के दी जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा उसमें पौष्टिक तत्व आ जाए, क्योंकि वहाँ सिंपल ही बनाई जाती है। हम भी घर में बनाते हैं खिचड़ी दाल चावल, और ज्यादा से ज्यादा होगा दो तीन सब्जियां डाल देते हैं। इसमें और ज्यादा क्या कर सकते हैं? अगर कोई बच्चा दूध ना पीता हो, दूसरा सवाल, तो उसको क्या हम पनीर बना के पनीर खिला सकते हैं, पनीर खाए अच्छे से? और बाकी एक, जैसे दिल्ली शहर में हम देखते हैं कि ज्यादातर शादियां रात के समय ही अटेंड होती है, तो वहाँ तो पूरे स्टॉल लगे होते हैं, बच्चे जो मर्जी खाते हैं, और बाद में 2 दिन बाद उनका पेट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये तो खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि उनको शादियों में जाना भी जरूरी है, तो ये सारी चीजें देखने की आती हैं। और लाभ देने की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? बच्चा एक्सरसाइज करता है, अगर दौड़ लगाता है, तो क्या उसको भुना हुआ नॉनवेज खा लेना चाहिए जिससे उसको एनर्जी बने बने रहे काफी लंबे टाइम तक? क्योंकि खाली पेट ही एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो कहते हैं कि थोड़ा नॉनवेज लेके भुना हुआ नॉनवेज खा के एक्सरसाइज करे तो उसमें काफी एनर्जी उसको मिलती है। ये मेरे सवाल।
1: जी धर्मवीर जी, हमारे पास समय की कमी है तो जल्दी से आप इसका जवाब दे दीजिए।
0: जी हाँ, आपको प्लान करना चाहिए कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। शादी में तो जाना है, तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं क्या लेना है। अगर उसमें सलाद हो या कम स्पाइसी वाला जो है, उस ऑप्शन लेना चाहिए, और उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि सेहत आपकी है और इसके लिए आपको कुछ कुछ कटौती तो करनी पड़ेगी।
1: जी डॉक्टर साहिबा, आज का जो विषय था, इस चर्चा में, पूरी चर्चा में कोई तीन चीज़ें अगर श्रोताओं को याद रखनी हो तो वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी
0: जी
1: है।
0: हाँ, पहले 1000 दिन, यानी बच्चे के जो फर्स्ट लाइफ के जो 1000 दिन, गर्भधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक माँ के पोषण और बच्चे की संवेदनशील देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
1: जी
0: दूसरा जो है पॉइंट, जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके स्तनपान शुरू करना चाहिए, और 6 महीने तक केवल और केवल स्तनपान, जो मैंने कहा आपको।
1: जी
0: तीसरा है, केवल कैलोरीज की मात्रा पर ध्यान न देकर पर्याप्त प्रोटीन लेना, तथा स्थानीय रूप से जो हमें उपलब्ध जो फल सब्जियाँ दालें अनाज मिलेट्स जैसे विविध जो पौष्टिक खाद्य पदार्थ का आहार में शामिल करना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूँगी, यदि याद रखिए, कुपोषण की रोकथाम की शुरुआत हमारे घर की रसोई और हमारी थाली से होती है,
1: जी
0: और स्वस्थ माँ, स्वस्थ बच्चा और पोषण से भरपूर परिवार।

0: यही एक स्वस्थ समाज की मजबूत नींव है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जाते जाते संदेश कुछ संक्षेप में सरल और स्पष्ट शब्दों में कुछ संदेश अगर आप देना चाहें हमारे श्रोताओं को।
0: जी हाँ, तो यही मैं कहना चाहूँगी कि आप प्लानिंग ठीक से कीजिए। आपको पता है आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है, आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरत है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट के साथ साथ आपको आयरन विटामिन्स की भी ज़रूरत है। तो इसीलिए आप प्लान कर लीजिए क्या आपको आहार लेना, विविध आहार, थाली में सब कुछ होना चाहिए, कलरफुल।
1: जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आने के लिए, विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने जाना कि अच्छा पोषण केवल अच्छे भोजन की तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक स्वस्थ, सशक्त और खुशहाल जीवन की नींव है। हमारी छोटी छोटी आदतें जैसे समय पर भोजन करना, संतुलित आहार लेना और मौसमी फल सब्जियों को अपनी थाली में शामिल करना हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि सही पोषण ही जीवन की आधारशिला है और आधारशिला मजबूत होगी तो भविष्य के साथ साथ देश भी रोशन होगा। अब आपसे मुलाकात होगी हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के अगले अंक में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
2: Hello, doctor.

0: Hello, Doctor.
1: ये था हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। विषय था कुपोषण की रोकथाम में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन की भूमिका। विशेषज्ञ थी डॉक्टर मानविका दत्ता, मेडिकल ऑफिसर होम्यो आयुष हॉस्पिटल श्री विजयपुरम। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी फातिमा। तकनीकी सहयोग रहा अनिमेश रॉय, मधुस्मिता शेल और सौरभ दास का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी मीना प्रकाश।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1 लाख दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा,
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: दुर्गा पूजा को मनाइए गोइंकास के साथ।
3: मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर और साड़ियों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन
2: गोइंकास के अबेडीन बाजार, भातुबस्ती, बम्बू फ्लैट और डिगलीपुर शोरूम में आइए और आकर्षक ऑफर्स पाइए।
3: जीन्स केवल 499 रुपए से शुरू,
2: शर्ट 490 रुपए,
3: क्रॉप टॉप और टी शर्ट 199 रुपए
2: और कुर्ती सिर्फ 190 रुपए से शुरू।
3: सूट पीसेस, वेस्टर्न टॉप्स, कढ़ाईदार कुर्ती,
2: रेडीमेड सूट, ब्रांडेड शर्ट, टी शर्ट के नए कलेक्शन के लिए
3: अपने पूरे परिवार के साथ आइए गोइंकास।
4: सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से।

0: 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते निराइशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटकेओ भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
4: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए

0: भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेयरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
0: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। इसमें भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
1: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2: ब्रिक्स वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनली ट्रेड।
3: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
2: वसुदेव कुटुंबकम।
1: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
7: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच आने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।

0: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरेम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन की मुक्की में यह मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी, पुतिन, फिजिशकियन। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार 4थे और कुल 6ठे खिताब पर नजरे। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. 18th BRICS summit to begin in New Delhi today. Discussions to focus on global governance, trade, security and supply chains as world leaders assemble for 2-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping and other BRICS leaders today on the sidelines of summit. Prime Minister Modi pushes for secure sea lanes, open supply routes and removal of trade barriers at BRICS Business Forum to sustain global trade. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Houthi rebels in Yemen seize strategic islands, tightening grip on key Red Sea shipping route. Uttar Pradesh government steps up relief and rescue operations as flood affect 25 districts. And in hockey, Indian women's team to clash with South Korea in semi-final of June.

अभी आप सुगम संगीत के तहत शब्बीर कुमार और जगमोहन को सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के ठीक 9 बजे हैं। तराने सुहाने।

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। कार्यक्रम का ये पहला खूबसूरत सा गीत हमने आपको सुनवाया कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नीरज के लिखे इस बोलों को संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये है फिल्म अजनबी का गाना। आनंद बख्शी के बोल हैं और आरडी बर्मन का है संगीत। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

मजरूह के गीत और आर डी बर्मन के संगीत में अगला गाना मेरे जीवन साथी फिल्म से, आवाज़ किशोर कुमार की। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए।

0: और अब कार्यक्रम में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का वक्त।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
2: Hello, मैं हूँ HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुँच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: Still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: Akashwani.

विजयपुरम से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने सुहाने। तो चलिए अगला गीत सुनवाते हैं ब्रह्मचारी फिल्म से। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ये बोल हैं हसरत जयपुरी के और संगीत है शंकर जयकिशन का, और आवाज़ें दी हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अब सुनवा रहे हैं पत्थर के सनम फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत। गीतकार हैं मजरू और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे TR महालिंगम का कर्नाटक शैली में बांसुरी वादन। इनके साथ वायलिन पर द्वारम मंगा थयारू, मृदंगम पर करेकुड़ी आरमणि तथा घटम पर गुरुमूर्ति ने संगति की है। तो पहले सुनिए TR महालिंगम का बांसुरी पर बजाया राग कापी, जो खंड चापू ताल में निबद्ध है। कृति त्यागराजा की है।

अभी आप टी आर महालिंगम का बांसुरी पर बजाया राग कापी सुन रहे थे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं इनका बांसुरी पर बजाया राग कलावती, जो आदि ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप TR महालिंगम का कर्नाटक शैली में बांसुरी वादन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बजे हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम कशिश। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं फिल्म वीर ज़ारा के इस गीत से। जावेद अख्तर के बोलों को संगीत से सजाया मदन मोहन ने। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर।

अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में आइए सुनते हैं फिल्म तमाशा का ये गीत। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है ए आर रहमान ने।

अभी आप लियोन डिसूजा, सुजैन डिमेलो की आवाज़ों में एक दीवाना था फिल्म का गीत सुन रहे थे। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी ए आर रहमान ने। अब हम आपको सुनवा रहे हैं साजिद वाजिद के संगीत से सजा फिल्म अजब गजब लव का गीत। बोल कौसर मुनीर के हैं और गाने वाले कलाकार हैं मोहम्मद इरफान व अंतरा मित्रा।

राहत फतेह अली खां की आवाज़ में सुनते हैं हीरोइन फिल्म का गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के शब्दों को संगीत से सजाया सलीम सुलेमान ने।

सलीम सुलेमान के ही संगीत से सजा तथा अमिताभ भट्टाचार्य का ही लिखा। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बैंड बाजा बारात से। आवाजें हैं सुनिधि चौहान और सलीम मर्चेंट की।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम कशिश। कार्यक्रम के बाकी गाने हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
2: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6-स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं और माइलेज भी बढ़िया है। 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
3: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
0: श्रोताओं, कशिश कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं संजीव दर्शन के संगीत से सजा आनंद बख्शी का लिखा ये गीत। गायक कलाकार रूप कुमार राठौर व जयश्री शिवराम और फिल्म का नाम है कितने दूर कितने पास।

सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज़ों में सुनिए दबंग 2 फिल्म का गीत। गीतकार इरफान कमल और संगीतकार हैं साजिद वाजिद।

अगला गीत सुनते हैं फिल्म खिलाड़ी 786 से। समीर अंजान के शब्दों को सुरों में ढाला हिमेश रेशमिया ने। आवाज़ है मीका सिंह की।

अगला गीत सुनते हैं फिल्म खिलाड़ी 786 से। समीर अंजान के शब्दों को सुरों में ढाला हिमेश रेशमिया ने। आवाज़ है मीका सिंह की।

विशाल ददलानी की आवाज़ में आप फिल्म तलाश का गीत सुन रहे थे। अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में जुनैद वाशी का लिखा ये गीत। फिल्म का नाम है 1920 एविल रिटर्न्स।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं जावेद बशीर और अदनान सामी की आवाज़ों में फिल्म रश का ये गीत। सईद कादरी के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है प्रीतम ने।

फिल्म रश के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम कशिश अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। अब पेश है फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं हिमालय की गोद में फिल्म का गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: श्रोताओं, गीत गुंजन कार्यक्रम के बाकी गाने हम आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत,

पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

गीत गुंजन कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं ऋचा शर्मा की आवाज में जन्नत फिल्म का ये गीत। सईद कादरी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है प्रीतम ने।

बचना ऐ हसीनो। अब हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का गीत शंकर महादेवन की आवाज़ में। गीत को लिखा अनविका दत्त गुप्ता ने और संगीत तैयार किया विशाल व शेखर ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फरहान अख्तर का लिखा रॉक ऑन फिल्म का गीत। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम गीत अतीत। एक बार मुस्कुरा दो कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। शेवान रिज़वी की लिखी इस गीत की तर्ज बनाई है ओपी नैयर ने।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं रवि का संगीतबद्ध किया तथा साहिल लुधियानवी का लिखा फिल्म बहू बेटी का गीत, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

सीआईडी। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। जानिसार अख्तर के बोलों को शुरू में ढाला था SD बर्मन ने। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में काला पानी फिल्म का गीत। गीतकार मजरू और संगीतकार हैं SD बर्मन।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: श्रोताओं, गीत अतीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है चेतना फिल्म से, जिसे गाया है मुकेश ने। गीतकार नक्श लायलपुरी तथा संगीतकार हैं सपन जगमोहन।

फिल्म घराना का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और कमल बरोट की आवाज़ों में। शकील बदायूनी के बोलों को संगीत से सजाया था रवि ने। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं जानवर फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం.
1: హలో, మే హూ HIV వైరస్. నామ్ తో సునాయి హోగా. మే ఆప్కా దోస్త్ బన్కర్ ఆప్కే శరీర్ మే ఘుస్కర్ ఆప్కో బీమార్ కర్ సక్తా హూ. మే ఏక్ సాథీ సే దూసరే సాథీ తక్ చార్ ముఖ్య తరీకే సే పహుంచ్ సక్తా హూ. HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को. इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं. और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं. और यही नहीं, हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है. कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ. तो मैं हूँ HIV वायरस. मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया.
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
0: Viramam tarvata karyakramaniki tirigi swagatham. Karyakramamlo bhaganga ippudu Jeans chitram nunchi oka paatanu vindam.

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 meter അഥവാ 684 kHz-ൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के इस सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मौजूद हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, प्रधानमंत्री ने अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है इस शिखर सम्मेलन से अलग, और अभी और किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का आज कार्यक्रम है?
1: हाँ जागृति, आज का दिन राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से करीब 1.5 घंटे बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह से ही ब्रिक्स के सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इसके अलावा इथियोपिया ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर चर्चा हुई। जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की पहली यात्रा है। जी जागृति।
0: जी धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। और इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेसियस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से क्वांगचो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। ये सेवा ऐसे समय फिर शुरू हो रही है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन ऐसे समय में बंद की गई है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई, जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और

0: Yuri Jong scored South Korea's only goal of the match. India will face the winner of the second semi-final between China and Japan in the final. Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and Lok Sabha Speaker Om Birla have extended their wishes to the countrymen on the occasion of Prakash Purab of Sri Guru Granth Sahib today. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब पेश है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाएंगे कुछ गजलें। फनकार हैं मेहदी हसन, मोहम्मद अजीज़ और मनहर उदास। तो पहले सुनते हैं मेहदी हसन की आवाज़ में ये गज़ल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप मेहदी हसन, मोहम्मद अजीज और मनहर उदास की आवाज़ों में कुछ गज़लें सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब पेश है व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। कार्यक्रम का पहला एसएमएस हमने लिया है संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं सुहाग फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

अगला गीत है पिया का घर फिल्म से। इस गीत की फरमाइश की है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रणय कुमारी प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे और प्रतिभा गोंडा ने नहीं।

ज़िला नांदेड़ यताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल सुनना चाहते हैं फिल्म पारस का ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में।

सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म अनाड़ी का ये गीत।

फिल्म परिवार का गीत सुनना चाहते हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी हिमाक्ष।

इस गीत के साथ ही व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: Malaysia and South Korea. India is seeking a third consecutive Women's Junior Asia Cup title after winning the tournament in 2023 and 2024. In US Open tennis, 8 seed Ben Shelton has set up men's singles title clash with top seed Alexander Zverev. Zverev of Germany defeated unseeded Russian player Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 in first semi-final this morning. Later in the other last four match, Ben Shelton overpowered 11-seeded Francis Tiafoe 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 in an all-American clash. In women's singles, defending champion Aryna Sabalenka will take on second seed Alina Rybakina in title clash in New York later tonight. Top seed Belarusian Sabalenka booked her place in the final with a 7-5, 6-2 victory over third seed American Jessica Pegula, while Rybakina from Kazakhstan defeated fourth seeded Coco Gauff in the semi-finals. Rybakina and Sabalenka have met 17 times, with Sabalenka leading their head-to-head record 10-7. In Grand Slam finals, the two have also faced each other at the Australian Open, with Rybakina winning in 2026 and Sabalenka claiming the title in 2023. Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and Lok Sabha Speaker Om Birla have extended their wishes to the countrymen on the occasion of Prakash Purab of Sri Guru Granth Singh Sahib today. In a social media post, Mr. Shah said that the sacred scripture encompasses invaluable teachings on service, sacrifice and equality. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS summit under India's presidency to begin shortly in New Delhi. Focus on global governance, multilateralism, trade, security and supply chains. World leaders assemble for 2-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping this evening. Prime Minister Modi holds bilaterals with his Malaysian, Vietnamese and Ethiopian counterparts. Also confers with Crown Prince of Abu Dhabi. Houthi rebels in Yemen see strategic islands tightening grip on Red Sea shipping route. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Orange alert for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, Telangana and Vidarbha for today. And in hockey, Indian women team enters Junior Asia Cup 2026 final, defeating South Korea 5-1 in Mochi, China. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबू धाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। 2 दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।

0: और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित
1: जी जागृति,
0: जी,
1: देखिए
0: हेलो
1: ब्रिक्स का
0: अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और इस सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं?
1: जी जागृति, देखिए ब्रिक्स इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है।
0: जी
1: विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस
0: जी
1: दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे ये नेता। इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे।
0: जी
1: शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन
0: जी
1: आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी
0: जी
1: वजह यह भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति,
0: जी धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी चिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
0: जी
2: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति चिनफिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति,
0: जी आनंद धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगझो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही

0: साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थीं, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
2: इंडिया इनोवेशन,
3: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व।
2: फ्रॉम लैब टू मार्केट, फ्रॉम इंडिया टू वर्ल्ड।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू बध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गो में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2,000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
4: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेश श्री।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबुधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक भागों में हल्की वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:32:25 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

पुरम केंद्र से। अब हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: के लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: श्रोताओं, नॉन स्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम में अभी आप तेजाब, बेताब, प्रेम प्रतिज्ञा, प्यार झुकता नहीं, बोल राधा बोल और राजा बाबू फिल्म के गीत सुन रहे थे। इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक अब समाप्त होता है।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर बाद के 3:30 हुए हैं। अब सैनिक भाइयों के लिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम व रूप कुमार राठौर की आवाज़ों में फिल्म बॉर्डर का ये गीत। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत है अनु मलिक का।

सोनू निगम, अभिजीत और श्वेता पंडित की आवाज़ों में सुनते हैं एक से बढ़कर एक फिल्म का गीत। देव कोहली के बोलों को संगीत से सजाया है आनंद राज आनंद ने।

0: Gems of India Challenge 2026. Ingam Gems of India Challenge tanet kai nirnayata ful ngambanam me he story me ninka kame aiye tarokre creators raltarik akungi kun panamre Andaman Nicobar Island asangam platform tahalil nanga ingam Gems of India Challenge tanet kai nirnayata ful chuki hamuk tamine tarol kangen tani hangritre tinri kenre ai akune kun panamre हे इनमेने तरोल कांगेन ट्रेडिशनल ही होल्डर ता अब तचिता स्टोरी ये ब्लॉकल आकु पनाम्रे अनुआ ताहमुक्तवा तही असानुप कंटेंट तसानुप कल्चर हेरिटेज टूरिज्म पोटेंशियल ट्रेडिशनल कोर्सिंग आर्ट्स हे इंस्पायरिंग लोकल स्टोरीज इंजे इनमेने डिस्ट्रिक्ट ही न वीडियो अपलोड लही न हो हिंग ने हे लुई मिनिट इन लाहेन न थ्रू गम माई वेव प्लेटफॉर्म इंगम वेव ओडीडी प्लेटफॉर्म रू लंगा अनगम की नेतरे तक ही आई एंट्री द रजिस्ट्रेशन अरे हे एनरोलमेंट इन रे आई इनगम माई वेव सेक्शन गम वेव ओडीडी प्लेटफॉर्म आई सेल इप द लोनाय अलहांगो सेप्टेम्बर चिंगेर तनेट कन निर्णय ताफूल मिने इन हेक तनेंगे ये तो सेलेक्ट करे वही मिन तनुप अपलोड लरे वीडियो आसा मिने प्राइस लेवल उ इनगम डिस्ट्रिक्ट लेवल न तानियानाय कन तनेंगे मिन मच इनगम स्टेट लेवल न नेट लेक तनेंगे मिन मच इनगम नेशनल लेवल न 5 लेक तनेंगे मिन असु अप्री तहा हक कदही रजिस्टर तरंगा अ इनगम माय वेव एप्स मच अपलोड लनु वीडियो रे त हेंग ने हे लुई मिनट्स इन लाहेन हो ये तो हंगे तरह तंगी प्रोग्राम
1: यो दिस इज स्टार किंग फिट विद सरप्राइज स्नो
2: आसा तनेंटा को निहारा हे ही हंगने तवाय इनराम

प्रोग्राम निहांग ही मिन दिन कर का नहीं राम कलो न दिन कर का चोचिन जिन होल ये फॉबी महांग यनांग ये धने इन राम कलो न दिन कर का गिरा ने आंग ही दिन कर का न दिन कर न्या लेमियल चेम्स आके रो नहीं राम कलो न ही सुसना यूटिकस मेडोना क्रिस्पिन बोलिना क्लेमेन आके रो।

0: kuchu gelang yin dhaidu loon chu ay hang mene tahli langa program ingi laharap ho yin ngatil ngang yin sin ngay tangamu hek inu rij ay hang roha nangin el ngita ka saada ida fern garo ta laharap ngay yin.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 9वीं कड़ी।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल की तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्याएं इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर आ रही है। इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्तचाप की स्तर मानक से अधिक होता है। ये एक स्थिति है जो धीरे धीरे विकसित होती है और आमतौर पर लोगों को पहले से ही पता नहीं चलता है। अगर यह समस्या नियंत्रित नहीं हो जाती है तो ये दिल, दिमाग, किडनी और अन्य शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है। उच्च रक्तचाप को अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ कार्य करता है। ये बीपी रक्त वाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी चला रहे होते। लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हृदय रोग और कभी कभी मृत्यु हो सकती है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अंतर्निहित चिकित्सा और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है।

ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि, तनाव और गतिविधियों की कमी, क्रॉनिक किडनी रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, गर्भावस्था या कुशिंग सिंड्रोम को उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण माना जाते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये एक क्रॉनिक बीमारी है और 90% रोगियों में उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इसे दवा के साथ और जीवन शैली और खाने की आदतों में कुछ संशोधन के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर नियमित चिकित्सा ध्यान देना है और अपने चिकित्सक के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। किडनी रोग एक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें किडनी की क्षमता मामूला से कम हो जाती है और ये सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण ये है दोस्तों, खान पान की गलत आदतें, अधिक नमक, अल्कोहल और अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है जो बाद में किडनी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं और किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप और किडनी समस्या आमतौर पर बढ़ती है अनियमित जीवन शैली, डिसऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, व्यायाम की कमी और अत्यधिक वजन, ये सभी उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज के कुछ लक्षण इस तरह हैं: बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त आना, थकान, सिरदर्द, नजरों में धुंधलापन, पैरों और एंकल्स में सूजन। तो इसके लिए क्या करें? कम नमक खाएं, कम तेल और सुपर फूड्स का सेवन करें। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, मखाने जैसे आहार उच्च रक्तचाप और किडनी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। योग, ध्यान या साधारण सीखी गई व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित चिकित्सकीय जांच और टेस्ट से आप अपने रक्तचाप और किडनी के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिनका समय पर पहचान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, सही खान पान आदतें बनाना और नियमित चिकित्सकीय जांच से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही सचेतता फैलाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए ताकि लोग इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और सही समय पर कदम उठाएं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसका सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपचार उच्च रक्तचाप के लिए काम करेंगे, जैसे स्वस्थ BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, नियमित व्यायाम, अतिरिक्त सोडियम को कम करना, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना। अन्य उपाय जैसे संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, सांस लेने का व्यायाम करना और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना।

प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना मुख्य रूप से प्राकृतिक उपचार खाते में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह था हाइपरटेंशन और उसके असर अपने किडनी पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करता है और यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 5 बजे उप प्रबंधक SBI दीपा से जनधन योजना पर की गई विशेष बातचीत आप सुन पाएंगे। 5:30 पर बंगला कार्यक्रम। किसान वाणी कार्यक्रम में आप संध्या 6 बजे महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर श्रीमती ज्योत्सना रुंडा से की गई बातचीत सुनेंगे। श्रोताओं संध्या 6:30 पर सुनिए बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम बीती यादें। लेखक शिव शंकर वशिष्ठ की लिखी झलकी आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाओं से आपको अवगत करवाएंगे संध्या 7:15 पर। संध्या 7:20 पर सुनिए दिल ने फिर याद किया। युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:30 जिसमें आप सुनेंगे कार्यक्रम ऐसा भी होता है। रात्रि 8 बजे आनंद लीजिए चित्रपट संगीत का। रोजगार समाचार का समय रहेगा रात्रि 8:30। तत्पश्चात आप सुनेंगे कार्यक्रम गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं ये तो थे हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रम।

0: और अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, हमारी पहली सभा आरंभ होगी सवेरे 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्री टिप्स, विषय रहेगा मुर्गियों में बाह्य परजीवी। इंद्रधनुष कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 6:15, विषय रहेगा धुन। रामचरित मानस गान आप सुनेंगे सवेरे 6:30 पर। 6:40 पर वतन के गीत, मौसम की जानकारी, कार्यक्रमों का विवरण से आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:40 पर। सवेरे 7:15 पर सुनिए कार्यक्रम देश रागनी। 7:30 पर होगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। सुगम संगीत का कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 8:30। कलाकार होंगे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल। सवेरे 9:00 आप सुनेंगे बाल जगत कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सवेरे 9:30 पर उल्लास कशालकर का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनेंगे। लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का समय रहेगा सवेरे 10:00। जनता जंक्शन, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दिन के 11:00। 11:30 पर होगा कार्यक्रम गजल। 12:00 तेलुगु कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:30। दोपहर 1:10 पर सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम। हमारे फनकार होंगे भूपेंद्र सिंह, चित्रा, उस्ताद सुल्तान खान, जगजीत सिंह। घर संसार कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:30। श्रोताओं, हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 10वीं कड़ी। शाम 4:40 पर आपको अवगत करवाएंगे कार्यक्रमों के विवरण से। बहारों की शाम कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 4:45। 5:00 तमिल कार्यक्रम। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30। संध्या 6:00 व्हाट्सएप बेस्ड महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा संगीत संगिनी। धरती के गीत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे संध्या 6:30 पर, जिसमें श्रोता कश्मीरी लोकगीत सुनेंगे। संध्या 6:45 पर सुनिए कार्यक्रम देशगान। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाओं से आपको अवगत करवाएंगे संध्या 7:15 पर। युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:30, जिसमें कार्यक्रम होगा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो म्यूजिक लवर्स। रात्रि 8:00 चित्रपट संगीत कार्यक्रम। रोजगार समाचार का समय रहेगा रात्रि 8:30, तत्पश्चात आप सुनेंगे गौरव गान कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अलावा न्यूज एट 9 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम अंग्रेजी में, तथा रात्रि 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:46 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।
1: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मैंने दिल तुझको दिया का ये शीर्षक गीत सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में।

आशिकी। श्रोताओं सुने इस फिल्म का गीत उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल की आवाजों में समीर का लिखा यह गीत है, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் வழங்கும் தமிழ் முதம் வணக்கம் நேர்களே.

0: শ্রোতা বন্ধুরা, এই গানটির সাথেই শেষ হচ্ছে আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। প্রচারিত হলো আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরম থেকে। বাংলা অনুষ্ঠান থেকে আমি অনামিকা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, নমস্কার, শুভরাত্রি।
1: अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को सुखमीत का नमस्कार और साथियों आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। किसान साथियों, जब जीवन आपकी इच्छाओं के अनुसार ना चले तो धैर्य बनाए रखें, क्रोध और निराशा के बजाय शांत मन से परिस्थितियों को स्वीकार करें और अच्छे समय का इंतजार करें, क्योंकि वक्त परिवर्तन लाता है, घाव भरता है, समस्याओं के समाधान देता है और हर कठिन दौर के बाद एक नई उम्मीद लेकर आता है। साथियों, आज के इन्हीं विचारों के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हुए आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और आज आपको बताना है कि मृगाल मछली तालाब के किस हिस्से का प्रयोग करती है। भाइयों, प्रश्न हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। किसान साथियों, हमारा आज का प्रश्न है कि मृगाल मछली तालाब के किस हिस्से का प्रयोग करती है। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के अंतर्गत हर रोज की तरह आज भी इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही बताएंगे। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में लीजिए सुनिए ये जानकारी।
2: किसान भाइयों, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। सालों से भारत देश को कृषि प्रधान देश ही कहा जा रहा है। देश की बढ़ती आबादी के कारण हर साल देश में अनाज की मांग बढ़ती ही जा रही है। देश की खाद्य पूर्ति और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अच्छी किस्म की खेती जरूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के हित के लिए बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की है। अच्छी खेती के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों को पानी की उपयोगिता के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें सिंचाई के नए साधन के बारे में बताया जा सके। कृषि सिंचाई योजना का मुख्य लक्ष्य है कि सिंचाई विभाग में निवेश को आकर्षित किया जा सके, जिससे कृषि योग्य भूमि का विस्तार हो सके और अच्छी किस्म की फसल प्राप्त हो। सरकार यह चाहती है कि इस योजना के द्वारा खेती के लिए जमीन का विस्तार अधिक हो। ये तभी हो सकता है जब सिंचाई की सुविधा किसान के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना के द्वारा सरकार इस बात का ख्याल रखेगी पानी का उपयोग सही ढंग से सही चीज के काम आए और इसके साथ ही पानी की कम से कम बर्बादी हो। वे चाहते हैं कि किसान प्रोत्साहित हो और जल के महत्व को जान सके। इस योजना के द्वारा ये भी कोशिश की जा रही है

0: कि किसान सिंचाई के लिए म्युनिसिपैलिटी के बेकार पानी को पुनः प्रयोग करना सीखे, इससे पानी की बचत भी होगी और फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलेगी। प्रधानमंत्री कृषि योजना कृषि विभाग में बेहतर से बेहतर सिंचाई सुविधा देना चाहती है। इस योजना के साथ एक टैगलाइन जुड़ी है, वो है हर खेत में पानी, जिसका मतलब है देश के हर खेत को पानी की सुविधा दी जाए। इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले मुख्य कार्य हैं पानी का प्रबंधन और आवंटन की ओर मुख्य रूप से ध्यान देना, खेती के मुख्य क्षेत्रों में पानी के भंडार और जलाशय को विकसित किया जाना जिससे सिंचाई को बढ़ावा मिल सके, खेती की जमीन के पास ही जल स्रोत बनाए जाए, किसानों को यह सिखाया जाएगा कि वर्षा के पानी को कैसे एकत्र किया जाए और कैसे सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, इससे सिंचाई के लिए अधिक से अधिक जल स्रोत किसानों को मिल सकेंगे। इस तरह के और भी अन्य नई सोच को बढ़ावा दिया जाएगा और कृषि से जुड़ी लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे वे अधिक फसल पैदा कर सकें और सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर न रहें।
1: भाइयों, अभी आपने कुछ बातें जानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। और किसान साथियों, अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं ग्यारह चरमा की रहने वाली श्रीमती जोशना रूंडा जी से। और ये आत्मनिर्भर बनकर इन्होंने अपने लिए रोजगार का सृजन किया और अपने परिवार की आय को बढ़ाने में ये कैसे मदद कर रही हैं, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। तो चलिए साथियों, सुनिए इनसे की गई ये बातचीत जिसका विषय है महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता।

0: जोशना जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
1: थैंक यू मैडम।
0: बताइए जोशना जी, आप क्या काम करती है, स्वयं सहायता समूह से आप कैसे जुड़ी, इस बारे में तमाम किसान साथियों को, तमाम महिलाओं को इस बात की जानकारी दें।
1: सबसे पहले तो मैडम आपको मेरा नमस्कार। मेरा नाम जोशना है, मैं SSG से जुड़ी हूँ 2018 से।
0: अच्छा।
1: 2018 जनवरी से जब मैं इसमें जुड़ी तो मुझे नहीं पता था कि मैं भी कुछ काम ऐसे कर पाऊंगी जैसे सब करते हैं। 2018 में SSG में जुड़ी तो मुझे बताया गया है, जब हमारे ऑफिसर्स आते थे, NCOI के सर आते थे, हमें बताते थे कि हम महिलाओं को काम करना चाहिए, मतलब किसी से मांगना नहीं, अपना खुद दूसरों को देना चाहिए, घर पर भी वक्त देते हुए हमें काम करके आत्मनिर्भर बनना चाहिए करके। तो 2018 में मैंने काम करने का सोचा, लेकिन थोड़ा हेल्थ इशू के कारण मैंने उसे थोड़ा स्थगित करते हुए 2019 में मैंने अपना अचार बनाने का कार्यक्रम शुरू किया। 2019 अक्टूबर में जब मैं अचार बनाना शुरू की तो वहीं से मैंने ट्रेनिंग भी लिया। ट्रेनिंग लेते हुए मैंने अचार बनाना शुरू किया। शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफें आई क्योंकि जो सामान लेना देना सब एडजस्टमेंट करते करते थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन उसके बाद जब मैंने उसे कार्यक्रम को शुरू कर दिया बनाना, उसे कैसे बेचना सब जब मुझे पता होना शुरू हो गया, तब मुझे बहुत अच्छा लगा और उससे दो पैसे भी आने लगे, उससे बहुत हेल्प हो गया मेरे मुझे घर में।
0: यानी कि आत्मविश्वास सबसे इसका महत्वपूर्ण वो होता है नारियों का। जब तक अपने अंदर हम आत्मविश्वास पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम जो है आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोच नहीं सकते। आपने ट्रेनिंग की बात की,
1: जी
0: ये ट्रेनिंग आपने कहाँ से लिया?
1: जी NCOI के ऑफिस में ही हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाता है, बहुत तरह की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे मुर्गी पालन है, फिर अचार बनाने का है, ब्यूटिशियन का है, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है।
0: जी
1: तो इसी में से अचार का जब मिला तो हमने उससे ट्रेनिंग लिया। और इसके अलावा मेरे घर में मेरी मदर भी अचार का कार्यक्रम हमेशा से घर में बनाती है हमारे लिए, तो अचार हम लोग उसी से बनाना भी सीखे हैं, तो इसीलिए मुझे बहुत हेल्प हो गया, बहुत ईजी लगा ये चीज़, तो वैसे ही मैंने अचार बनाना शुरू कर दिया।
0: तो फिर अचार आप घर पे ही बैठकर बनाती रही?
1: जी मैडम, घर में ही बैठ के बनाती थी। इसके लिए लाइसेंस वगैरह लेना पड़ा, वो सब पेपर वर्क जो है सर लोग बहुत हेल्प किए, बताए कैसा लेना क्या करना, सब करने के बाद ही मैंने अचार बनाना शुरू किया।
0: फिर जब अचार आप बनाने लगी, फिर उसका जो बिक्री है वो कैसे करने लगी
1: मैडम शुरू शुरू में अचार

0: बनाते थे और सबको नंबर दे देते थे कि अगर किसी को ज़रूरत है तो कांटेक्ट करो। उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब इससे क्या होता है, बिज़नेस थोड़ा कम चलता है, फ़ोन के द्वारा आता
1: जी
0: है।
1: जी
0: फिर क्या करते थे हम लोग, बनाने के बाद में दुकान में सेल करते थे, आसपास के दुकान में डालना शुरू किए, फिर उससे भी अच्छा आमदनी आना शुरू हुआ। तो फिर हम लोग कैंटीन में भी डाले, जो नेवी कैंटीन होता है उसमें भी
1: जी
0: डाले, उसमें बहुत अच्छा अमाउंट आता था, एक ही बार में अमाउंट आ जाता था। तो
1: अच्छा
0: इससे हम लोग क्या है, बिजनेस भी बढ़ता गया और बाहर भी, जब बाहर से कोई ऑफिसर्स आते हैं घूमने के लिए तब हमें ऑर्डर देके, मेरा हस्बैंड भी नेवी से जुड़ा हुआ है तो उनको ऑर्डर मिलता है, तो इसी इसी तरह मैं बाहर भी अपना अचार बेचती हूँ। फिर दिल्ली हर्ट में भी प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी मैंने अचार अपना भेजा है।
1: अच्छा, यानी कि छोटे से लेकर शुरुआत की आपने, लेकिन बहुत आगे तक इस काम को आपने मुकाम दिया।
0: जी मैडम,
1: तो इस काम को करते हुए जोशना जी कैसा लगता है?
0: शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था कि मैं काम कर रही हूँ कमाने के लिए, लेकिन अभी जब करते करते मुझे मज़ा आने लगा है कि मुझे
1: हाँ
0: पता
1: हाँ
0: चल गया कैसा करना है क्या करना है। अभी तो टाइम भी बच जाता है और
1: बिल्कुल
0: सवेरे ही शुरू करो तो मेरा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है मैडम। और बच्चे भी घर में भी सब मुझे हेल्प करते हैं
1: हेल्प
0: करने के
1: करते
0: लिए,
1: हैं।
0: बेटी बहुत, बेटी टेस्ट मेरा करने का काम होता है, मेरे बेटी का जो
1: अच्छा
0: टेस्ट हमेशा वही करती है, और मेरा हस्बैंड मुझे पैकेजिंग करने में या फिर सामान पहुंचाने में सबके लिए, घर में घर वाले ही मिलके हम लोग ये बिजनेस करते
1: यानी
0: हैं।
1: पूरे परिवार का सहयोग आपको प्राप्त है,
0: जी
1: तभी जाकर के आप इस काम को बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से कर पा रही हैं।
0: जी जी जी मैडम,
1: तो हम ये अब ये जानना चाहेंगे कि जोशना जी, जैसे आपने अचार का काम 2019 से शुरू किया, अब तक 2026 तक आप कितने पैसे अपना जो है अपना कमा चुकी है, यानी अपनी आर्थिकी कितनी मजबूत कर चुकी है?
0: मेरी आर्थिक स्थिति अभी बहुत मजबूत है मैडम, बताऊं तो बहुत ही, मतलब अमाउंट इतना है कि अभी जरूरत पड़े तो बच्चों को बाहर बेचकर पढ़ा सकते हैं, उतना
1: अच्छा
0: अमाउंट है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता था कि ऐसा करना वैसा करना, लेकिन अभी इस साल से मैंने भी, मतलब पहले एक आमदनी आती थी लेकिन
1: जी
0: उतना जमा करना वैसा करना वैसे मैंने कभी सोचा नहीं
1: सोचे
0: था,
1: नहीं थे।
0: लेकिन अभी मेरे को, मुझे आइडिया हो गया है कि आमदनी को कैसा बचत करना है, कैसा खर्च करना है, मतलब समय के हिसाब से मैंने भी चलना सीखा है, बस इतना ही
1: यानी
0: बोल
1: कहने
0: सकती
1: का
0: हूँ।
1: मतलब कि महिलाओं के पास जो है अपने पैसे होने से अपने फैसले वो खुद ले सकती हैं,
0: जी जी जी
1: लेकिन हमेशा रहता है ना कि न तो पति के सामने, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है।
0: जी जी जी मैडम,
1: हाँ
0: इसके लिए मैं एनसीआई को धन्यवाद दूंगी जिसके
1: बिल्कुल
0: वजह से मैंने ये सीखा है कि किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। पहले मैं भी मांगा करती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन 2019 के बाद मेरा भी समय अच्छा चल रहा है कि मैं किसी से पैसे अभी मांगती नहीं हूँ, ऊपर वाले की दया से। और मतलब एनसीआई के ऑफिसर जो हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर सिंह सर है,
1: जी
0: नरेश राम सर है, हमारी सबसे पहले तो हमारी मैडम है संगीता मैडम, जो हमें इस मुकाम तक पहुँचने में बहुत
1: बिल्कुल स्वयं
0: सहायक है।
1: सहायता समूह को
0: जी
1: वो
0: जी जी
1: बिल्कुल
0: जी जी
1: ट्रेनिंग देती रही हैं, और
0: जी जी जी
1: आप
0: मैम,
1: सभी महिलाएं जो है एकजुट होकर जाती हैं, ट्रेनिंग लेती है, तभी जा करके आप सफल हुई हैं।
0: जी मैडम,
1: अब हम यही कह सकते हैं कि तमाम महिलाओं को जो है आज भी जो घर पर बैठी हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी?
0: जो घर पर बैठी है महिलाओं को बस यही कहना चाहूंगी कि घर पर रहना अच्छी बात है, लेकिन घर के लिए अगर थोड़े पैसे आप भी इकट्ठा कर लो तो घर में मदद हो जाएगी। थोड़े पैसे, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा समय आप भी
1: थोड़ा
0: घर
1: सा
0: में निकालिए, अचार बना लीजिए या फिर कोई भी काम, पापड़ बना लीजिए, जो भी काम आप जो कर सकती है वो काम करके मिठाई बना लीजिए, पायसम बना लीजिए, लड्डू, कुछ भी मैडम बनाकर उसे बेच सकती है।
1: और देखिए बेचने के लिए तो आजकल कई
0: जी जी जी
1: साधन हैं,
0: जी जी
1: जैसे
0: जी
1: ITF ग्राउंड में दिया जाता
0: जी
1: है, फिर
0: मरीना
1: गर्ल्स
0: पार्क में
1: मैरिना
0: भी
1: पार्क
0: लगता
1: में
0: है, मैं भी
1: लगता है।
0: बैठी हूँ मैडम मरीना पार्क में, 2 बार मैं भी बैठी हूँ, जंगली घाट में बैठी हूँ, लेकिन बहुत अच्छा अचार का सेल बहुत अच्छा होता है मैडम वहाँ
1: अच्छा
0: में।
1: होता
0: जब मैं मरीना पार्क में बैठी थी 2 बार, दोनों बार में मेरा अचार बैलेंस नहीं आया, पूरा का पूरा बिका है अचार,
1: है। अच्छा
0: इसीलिए अचार का सेल बहुत अच्छा है।
1: बहुत अच्छा,
0: और
1: यानी
0: आजकल तो हर गृहिणी अचार तो बनाना
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जानती है।
1: और ये जो गृहिणी जो है कोई भी काम छोटा नहीं हो समझना चाहिए उनको, अगर मन लगा के करे तो छोटे से शुरुआत करके बड़े मुकाम हासिल कर सकती है। आपने जैसा कहा कि सभी तरह की ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है, तो जोशना जी तमाम महिलाओं को आप ये बताएं कि स्वयं सहायता समूह से वो कैसे जुड़ें, जुड़ने के बाद वो अपने कार्यों को कैसे अंजाम दें।
0: स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए 10 महिलाएं या 11 महिलाएं मिलकर अपना
1: जी
0: एक ग्रुप बनाएं,
1: छोटा
0: ग्रुप,
1: सा
0: छोटा सा ग्रुप बनाएं, फिर बैंक से, या तो कॉपरेटिव बैंक से भी होता है, कॉपरेटिव सोसाइटी से भी जुड़ सकते हैं या फिर एनसीआई से भी जुड़ सकते हैं, किसी से भी जुड़कर अपना एक ग्रुप बनाइए। उसके बाद या तो आप ग्रुप में काम कीजिए या फिर इंडिविजुअली अकेले रहकर भी काम कर सकती है और काम, लेकिन बैठिए मत, कुछ भी एक ग्रुप बनाकर जुड़कर काम कीजिए।
1: देखिए किसान, हमारा जो ग्रामीण इलाका होता है ना, किसान भाई जो है खेतों में चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं अक्सर घर पर ही होती हैं, तो महिलाओं को सिर्फ, अगर जिनको अचार बनाने का शौक नहीं है तो घर में और

0: कई तरह के काम होते हैं, जैसे अपने घर के बगीचे में कुछ उगा सकते हैं,
1: जी जी
0: उसको वो
1: जी जी
0: बेच
1: जी
0: सकते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी मैडम, ऐसे जब मेला लगता है तो जैसे आलू हो जाता है, कप्पा बोलते हैं जिसको,
0: जी
1: वो
0: जी
1: बेच सकते हैं, केला बेच सकते हैं, केला का फूल है, अंडा है, जो भी घर में साधन है उस चीज़ को ले जाकर बैठकर वो बेच सकती हैं।
0: महिलाएं सोचती है ना, उसके लिए बहुत सारी जमीन की आवश्यकता होती है, तो वो जो है उस काम को आगे बढ़ने से थोड़ा सा कतराती है, लेकिन आपके जरिए उनको अब ये संदेश मिल गया होगा कि छोटी सी जगह पर कुछ भी वो कर सकती हैं। जैसे अगर नारियल के पेड़ है उनके पास, तो
1: जी जी
0: वो
1: जी
0: झाड़ू बना सकती
1: झाड़ू
0: है,
1: बना सकती है, नारियल को भी वो बेच
0: नारियल
1: सकती
0: को
1: है,
0: भी
1: नारियल
0: बेच
1: के
0: सकते,
1: छिलके से भी
0: बिल्कुल
1: बस्ता या फिर कुछ कितना तरह का आइटम आजकल
0: बन
1: बन
0: सकता
1: जाता है।
0: है।
1: जी मैडम, बनाकर बेच सकती है, महिलाएं शर्माए नहीं और खुलकर अपने काम करें और दो पैसे जो आमदनी आ रहा है उनको आने दीजिए।
0: महिलाओं को जो है रोजगार के कई अवसर हैं, हुनर सीखने के लिए उन्हें आगे आना होगा और जो है अपनी पूरी मेहनत करनी होगी, तब जा करके वो जो है अपने काम को अंजाम दे पाएंगे।
1: जी जी जी
0: साथियों, महिलाएं जो होती हैं वो आज हर क्षेत्र में अपनी जगह बना चुकी हैं। जोशना जी हमारे सामने हैं उदाहरण, और उन्होंने बहुत सारी बातें आपके साथ साझा की, किस तरह से उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और क्या क्या काम किए। आज वो अपने काम से बेहद खुश भी हैं। और चलते चलते एक छोटा सा संदेश हमारी बहनों को क्या देना चाहेंगी जोशना जी?
1: बस बहनों को यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा से समय निकालकर, अपने लिए भी वक्त निकालकर थोड़ा काम कीजिए और आगे बढ़िए, थोड़े पैसे कमाइए, घर में सेव कीजिए, ताकि आने वाली परिस्थितियों में हमें कब कहाँ जरूरत पड़ जाए हमें नहीं पता है, इसीलिए थोड़ा मेहनत कीजिए।
0: बिल्कुल, खाली ना बैठे, समय की बर्बादी ना करे, यही हम महिलाओं के लिए संदेश है। और उम्मीद करते हैं जोशना जी की बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। साथियों, जोशना जी कार्यक्रम में आने के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
1: धन्यवाद मैडम।

महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता। किसान साथियों, अभी आपने इस विषय में 11 चरमा की रहने वाली श्रीमती जोशना जी से की गई ये बातचीत सुनी। और साथियों, अब कार्यक्रम के माहौल को कुछ गीत संगीत की ओर लिए चलते हैं और आपके साथ आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

किसान साथियों, आइए अब हम आपको दे दें एक छोटी सी जानकारी जैविक खाद का उपयोग इस विषय पर। आज के समय में खेती में रासायनिक खादों का उपयोग काफी बढ़ गया है। इससे फसल तो जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन इससे मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम हो जाती है और हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम प्राकृतिक और सुरक्षित खेती की ओर बढ़े, जिसमें जैविक खाद का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जैविक खाद क्या होती है। जैविक खाद वह खाद होती है जो प्राकृतिक चीजों से बनाई जाती है, जैसे गोबर, पौधों के अवशेष, रसोई का कचरा और हरी खाद। यह खाद मिट्टी को पोषण देने के साथ साथ उसकी संरचना को भी बेहतर बनाती है। अब बात करते हैं जैविक खाद के प्रकारों की। पहला है गोबर खाद। यह सबसे सामान्य और आसानी से उपलब्ध खाद है। इससे पशुओं के गोबर से बनाया जाता है। यह मिट्टी को पोषक तत्व देती है और उसकी जल धारण क्षमता बढ़ाती है। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट, या केचुओं की मदद से तैयार की जाती है। इसमें पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और यह फसल की वृद्धि को तेजी से बढ़ाती है। तीसरा है हरी खाद। इसमें कुछ खास पौधों को उगाकर उन्हें खेत में ही मिला दिया जाता है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। अब सवाल आता है कि जैविक खाद का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले खेत की जुताई करते समय जैविक खाद को मिट्टी में अच्छे से मिला दें। फसल बोने से पहले 2 से 3 हफ्ते पहले खाद डालना सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा, फसल के बढ़ने के दौरान भी जरूरत के अनुसार खाद दी जा सकती है। इससे पौधों को लगातार पोषण मिलता रहता है। अब हम इसके फायदों की बात करते हैं। जैविक खाद का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखती है। यह मिट्टी की सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाती है, जिससे मिट्टी जीवित और उपजाऊ बनती है। दूसरा, यह पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इससे ना तो जल प्रदूषण होता है और ना ही हवा प्रदूषित होती है। तीसरा, इससे उगाई गई फसलें स्वास्थ्य के लिए

बेहतर होती है। आजकल लोग ऑर्गेनिक फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। हालांकि जैविक खाद के उपयोग में कुछ सावधानियां भी जरूरी है। हमेशा अच्छी तरह सड़ी हुई खाद का ही उपयोग करें। अधपकी खाद फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। खाद की मात्रा का सही ध्यान रखें। जरूरत से ज्यादा खाद से भी नुकसान हो सकता है।

भाइयों, जैविक खाद के उपयोग के संदर्भ में अभी आपने ये जानकारी हासिल की। और साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम में फिर वक्त हो चला है आपसे आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। भाइयों, कार्यक्रम के आरंभ में आज हमने आपसे पूछा था कि मृगाल मछली तालाब के किस हिस्से का प्रयोग करती है, और इस प्रश्न का सही जवाब है मृगाल मछली तालाब के निचले हिस्से का प्रयोग करती है। हम समझते हैं कि आप सभी ने इस उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी।

साथियों, इसी के साथ आज के लिए किसानवाणी की इस पहविल को अब हम यहीं पर देते हैं विराम। अब मुलाकात होगी अगले अंक में कुछ नई बातों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और फिलहाल के लिए सुखमीत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
4: श्रोताओं, अभी आप किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम बीती यादें।
5: बीती यादें।
6: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम बीती यादें। कहते हैं यादों के रंग कभी फीके नहीं पड़ते। बचपन की शरारतें, परिवार के साथ बिताए पल और जिंदगी से मिले अनुभव, ये सब हमारी जिंदगी की अनमोल पूंजी है। आज हमारे साथ एक ऐसे वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं जिनके जीवन में अनुभवों का एक लंबा सफर समाया हुआ है। आइए उनका दिल से स्वागत करते हैं। रतिन लाल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: नमस्कार जी।
6: तो सबसे पहले हम आपको आपके बचपन की गलियों में ले जाना चाहते हैं। तो आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ के रहने वाले हैं आप?
7: हम तो पहले आपका पैदा हुए अपरेडिंग बाजार में, जो आपका टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे पैदा हुए थे। फिर उसके बाद में हम लोग ने जंगली घाट आ गए थे। फिर मैं जंगली घाट पे रहने लगा हूँ। फिर वहीं मेरा जो है बचपन उम्र है वो हम बिताए।
6: उस समय का माहौल कैसा था, उस समय का अंडमान और आज के अंडमान में क्या अंतर पाते हैं?
7: बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले के अंडमान में लोग कम थे, भीड़ भाड़ इतना नहीं था, कार वगैरह इतना नहीं था, गाड़ी घोड़ा इतना नहीं था। लोग का आना जाना जो है साइकिल वगैरह में हुआ करता था और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया। हम लोग का टाइम में इतना पॉपुलेशन नहीं था, बहुत शांत जगह था। कोई हम जैसे बुजुर्गों को तो अभी रोड उड पार करना भी थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो ये है बचपन से अभी तक देख रहे हैं वही
6: परिवर्तन आ गया है।
7: बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। इतना परिवर्तन हम लोग टाइम में नहीं था, स्पोर्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्योंकि वो टाइम तो आज़ादी हो के भी तो इतना लंबा टाइम नहीं मिला था ना। अभी तो देश आज़ाद हो के लंबा टाइम मिला, तो तरक्की करने का मौका मिला, बच्चों का हर फैसिलिटीज मिला। हम लोग टाइम इतना फैसिलिटीज नहीं था। नहीं, यहाँ पे मैं खेलते थे अपने बच्ची के बच्चों के साथ में मस्त रहते थे, खेल खा के इस तरह का चलता था हम लोग का बचपना। और उस समय का बात, और अभी के समय के बाद में बहुत बदलाव आया बेटा। पहले लोग जो है रेडियो वेडियो वगैरह में सुन लेते थे न्यूज़ वगैरह, और ये टीवी वगैरह नहीं था, उसमें मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, बस एक टेलीफोन था। वो भी बस्ती में कोई खास जो नामी ग्रामी आदमी उनके घर में रहता था। अभी तो मोबाइल का ज़माना आ गया, तो अभी घर बैठे वो करो। पहले शादी ब्याह होता था तो घर घर जाके इनवाइट करते थे और लोगों से मिल के बातचीत करते थे। अभी तो मोबाइल आ गया, मोबाइल में बता दिया भाई फलाना तारीख को शादी है, फलाना तारीख को कथा है, फलाना तारीख को ये है, तो उससे लोग आ जाते थे। समाज में ऐसा नहीं था समय। अभी तो बहुत बदलाव आया, कम लोग थे बेटा इतना परिवार में। तो उन दिनों का बात और था, अब इन दिनों का बात और है। तो लोगों का उस टाइम में प्यार बहुत ज़्यादा ही था। अभी तो लाइफ ना बेटा बहुत बिजी हो गया
6: जी। हर जीवन की अपनी कहानी होती है, उसमें खुशियाँ भी होती है और चुनौतियाँ भी। तो आगे यही जानना चाहेंगे कि आपका कार्यकाल का समय कैसा रहा?
7: जब मैं शुरू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गया था तो उस समय में बहुत ज़्यादा मतलब रोड वोड नहीं था, कच्चा रोड था, हम लोग पैदल आने जाना पड़ता था। तो जो सुबह निकलते थे दिन का खाना तो भूल ही जाते थे कि भैया खाएँ, मिलेगा नहीं मिलेगा। पर लोगों से मिलते थे, किसानों से। किसान जो होते थे वो ईस्ट पाकिस्तान से, जो बांग्लादेशी है, जो वहाँ से अभी तो बांग्लादेशी बन गया, उत्तर पाकिस्तान था। तो लोग आते थे, उनका गवर्नमेंट उनको ज़मीन देता था, 5 एकड़ पैडी लैंड देता था और कुछ उनको हाउस साइड देता था। तो हम लोग जाके उनका पैडी वगैरह देखते थे, उन लोग पूछते थे

0: ये सर हमारा ही पैडी में ये इफेक्ट है, हमारा वेजिटेबल में ये कीड़ा लगा हुआ है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे करूँ, कैसे इसे बचाऊँ। तो उस तरह का हम लोग जाते थे और अपना दवा वगैरह उनको बताते थे कि भाई इस तरह का दवा यूज़ करो, और वो मौसम देख के दिन को आपका ये दवाई नहीं दिया गर्मी का टाइम, थोड़ा तो मौसम जब ठंडा रहता है सुबह का टाइम, वो टाइम में दिया करो, बहुत सुबह भी नहीं दिया पड़ता, बहुत पानी रहता तो उसमें नहीं हो पाता। इस तरह चलता था लाइफ। और बाकी भी ये है, प्रोग्राम करते थे किसान प्रोग्राम, तो उसमें किसानों को हम लोग हर चीज़ समझाते थे, एक एग्रीकल्चर से नहीं है बल्कि एनिमल हस्बेंड्री का भी कुछ सब्जेक्ट लेकर समझा दिया करते थे कि ऐसा भैया गाय पालो, ऐसा दूध दूध मिलेगा तो उससे क्या होगा, घर का खर्चा पानी वो चल जाएगा। तो किसान मानते थे, बहुत किसान अच्छे भी थे, बहुत लोग बात भी पूछते थे सर ऐसा करने से कैसा होगा, ऐसा करने से कैसा होगा, तो हम लोग उसको सही बता दिया। बात यह है जब हम लोग बताते थे तो जाके देखते भी थे कि ये हमारी बात का कुछ इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो तब जाके वो देखते थे हाँ भाई ये हम लोग बताए इस तरह काम करो। मान लीजिए इससे ज़मीन पीछे थोड़ा है भी खेत के अलावा भी, तो वहाँ भी हम लोग बताते थे सब्जी वगैरह गाड़ दिया करो, उससे फ़ायदा होगा, आपका घर भी चलेगा और आप बिक्री भी कर सकते, इससे आपका कुछ रुपया मिलेगा, उससे आप राशन पानी भी चल सकता है। इस तरह का हम लोग बहुत तरीक़े से उनको समझाते थे, तो मानते थे किसान बात को हम लोग, कुछ पढ़े लिखे भी थे जो नहीं पढ़े लिखे थे वो भी समझते थे।
1: तो आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
0: मेरा तो बस यही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज से लार्ज स्केल पर जो फैलो लैंड है उसको कल्टीवेशन में लाना, उसको डेवलप करना और लोगों को बताना है कैसा क्या किया जा सकता क्या नहीं किया जा सकता, तो वही अचीवमेंट है। और ये टारगेट कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाने को मिले, फ्रेश सब्जी मिले, फ्रेश दूध मिले, यही तरह यही है हमारी अचीवमेंट।
1: जीवन में मिली कोई ऐसी सीख जिसने आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया?
0: हमारा जो है वर्क जो है काम है, वो काम को देखते हुए हमको प्रेरित किया। जो अच्छा हम लोग काम करते थे तो ऑफिसर भी हम लोग को गुड बुक में रखते थे, बोलते थे कि भाई ये गुड वर्कर से करके समझाते थे करते थे। इस तरह का प्रेरणा हम लोग को मिला, हमको प्रेरणा मिला, ऑफिसरों से भी मिला।
1: कहीं बाहर ट्रांसफर वगैरह हुए आपके?
0: हाँ जी, ट्रांसफर हुआ। पहले मैं VLW में काम करता था, फिर वहाँ से हम एग्रीकल्चर में आया, तो हम बकुंतला हमारा पोस्टिंग हुआ, फिर उसके बाद में रंगत हुआ, फिर उसके बाद में आपका नींबू डेरा हुआ, फिर नींबू डेरा से ट्रांसफर हुआ नील में था, उसके बाद में हम हडवे में था, फिर हडवे से फिर ट्रांसफर के फिर नींबू डेरा आया, फिर नींबू डेरा से फिर हम आपका जीरकटंग ट्रांसफर हुआ, जीरकटंग से फिर आपका चोलदारी हुआ, फिर चोलदारी से हो के फिर नींबू बगीचा हुआ, इसको आपका कॉफ़ी बगीचा कहते हैं।
1: जी
0: तो इस तरह का हमारा ट्रांसफर तो बहुत ही हुआ। हाँ, फिर उसके बाद में हम आपका ये इधर से सेक्रेटरी में थे जो बागवानी का जो फूल का बगीचा में, और जब हमारा जो बगीचा को देख के जो है सेक्रेटरी का तो बहुत खुश होते थे, और हम लोग को जाना पड़ता था बंगला में, चीफ सेक्रेटरियों का बंगला में, तो उस बंगला में हम लोग जाते थे तो माली देते थे, माली बोले से जो उनको काम करने वाले, तो वो माली से हम लोग काम करवाते थे और जो बताते थे तो मैडम लोग भी बड़े खुश हो जाते थे, बोलते थे आप लोग तो बहुत अच्छा से डेवलप किया हुआ है। हम लोग हमेशा जो है एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, मान लीजिए जैसे भिंडी है आप गाड़े है, तो भिंडी ख़त्म होने से पहले दूसरा प्लॉट हम लोग का तैयार हो जाना चाहिए ताकि रेगुलर इनको वेजिटेबल मिलती रहे, बाद में गैप ना हो वेजिटेबल। इस तरह हम लोग काम किए हैं,
1: तो सिस्टमेटिक वे में काम करना।
0: सिस्टमेटिक वे में काम किया है कि रेगुलर मिलते, मतलब ये है ये ख़त्म हुआ तो वो तैयार हुआ, वो ख़त्म हुआ तो ये तैयार हुआ, और हर किस्म का वेजिटेबल है, मतलब लुबिया है, भिंडी है, करेला है, बैगन है, तुरई है, कुमड़ा है, सब वेजिटेबल हम लोग भी करते थे वहाँ में। हमको तो ये पोर्ट ब्लेयर का जो सेक्रेटेरिएट एरिया का जो राउंड में हम काम किया वो हमको बहुत पसंद आया।
1: और समय बदलता है और उसके साथ समाज भी बदलता है, तो आपको अपने समय और आज के समय में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं?
0: पहले के समय में तो हम लोग इतना कम्युनिकेशन वगैरह कुछ नहीं था, इतना मतलब आना जाना लोगों के साथ में, पैदल आना जाना, पैदल वो करना पड़ता था, तो कम्युनिकेशन के लिए कुछ नहीं था। अभी तो कम्युनिकेशन के लिए गवर्नमेंट मोटरसाइकिल भी देता है और अपना परचेज भी करते, स्कूटर हम लोग परचेज करके हम लोग गाँव गाँव जाके मिलते थे, और जो सुबह निकलते थे तो वो हम लोग शाम को ही आते, दिन का आपका खाना का तो बातें ही नहीं करते थे क्योंकि हम लोग इतना लंबा टूर रहता था, क्योंकि पैदल जाके हम लोग सबसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए लोग पैदल जाके लोगों से नहीं मिल पाते थे, अपना गाड़ी से जाके मिलते थे, आते थे जाते थे, और क्योंकि उनसे भी नहीं मिल रहे थे फिर वो लोग थोड़ा दुखी हो जाते थे, अरे बाबू नहीं आए, बाबू नहीं आए, बाबू नहीं आए करके, इस तरह का हम लोग चलता था।
1: जी, किस पद से रिटायरमेंट हुए हैं आप?
0: मैं तो एग्रीकल्चर

0: पोस्ट की खैर वो।
1: आज जब बीते पलों को याद करते हैं तो अपने जीवन की किस बात के लिए सबसे ज़्यादा अपने आप को संतुष्ट पाते हैं कि हाँ मेरा जीवन सफल रहा है?
0: मैं सर्विस से संतोष रहा, जितना दिन मैं सर्विस किया और मैं अपनी सर्विस से बड़ी संतोष था, और उससे ही अभी भी मैं कभी कभी याद करता हूँ अपनी सर्विस लाइफ को, तो मुझे बड़ी आनंद मिलता है, बड़ा वो मिलता है कि भाई हाँ हम अपना लाइफ में ये काम किया है। अपना लाइफ में जितना मेरा काम था, जो गवर्नमेंट हमें टारगेट दिया था तो टारगेट हमने पूरा किया और काफ़ी अच्छा से मतलब उसको देखभाल किया।
1: रिटायरमेंट के बाद आपकी दिनचर्या कैसी रहती है?
0: व्यायाम तो हम इतना नहीं करते थे, ऐसा वॉक वगैरह मॉर्निंग हम चले जाते थे, सुबह निकल जाते थे, आज आते थे सुबह मॉर्निंग वॉक, उसके बाद में अपना रूटीन वर्क है वो करते थे, और अपना मेरा खुद अपने ही लैंड है पेडीलैंड सिफी घाट में, तो वहाँ पे मैं जाते थे, प्लांटेशन दिखते थे अपना, तो वहाँ में घूम फिर के काम देख के तो अपना टाइम हमारा आराम से पास हो जाता था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि टाइम हमारा पास ना हो।
1: गाने
0: हाँ
1: वगैरह सुनते हैं?
0: हाँ गाने वगैरह का हमको बड़ी इंटरेस्ट भी है और सुनते भी है, पहले तो मैं गाता भी था, अभी तो नहीं गा पाता, क्योंकि हम लोग मंगल मंगल को मंदिर जाते थे तो भजन भी करते थे, तो अच्छे वो टाइम में और था, और गाना भी ऐसा है कि शादी भी हमें होता रहा तो गा लेते थे, सब हंसते भी थे, अरे भैया ठीक से गाओ ठीक से गाओ, अरे भैया गाते आता हूँ और क्या ठीक से गाऊँ, फिर इस तरह का चलता था। और एक चीज़ और है हमको आप बताना भूल गए, मैं हंटिंग का बड़ा शौकीन था,
1: अच्छा
0: बहुत ज़्यादा शौकीन था, तो हमारे पास में गन था, मेरे फादर का गन था, फादर वो गन हमको दिए थे 12 रोलर मेड इन इंग्लैंड का, तो वो गन से हम शिकार उखार भी कर लेते थे, उससे भी हमारा टाइम पास हो जाता था। अब
1: जी
0: एज के
1: जी
0: हिसाब से पहाड़ वहाड़ भी चढ़ नहीं पाते थे, उन दिनों में तो जवान बच्चा वो एज था, चढ़ जाते थे काम कर लेते अपना शिकार कर मार के ही आते थे, घर में बोल देते थे भैया मसाला पीस के रखो, हम लोग जाते थे हमारे बस जाके मार लेके ले आते थे, बनाते थे हम इंजॉय करते थे, ऐसा लाइफ था हमारा भी।
1: पहले ज़माने में लोग एक दूसरे से मिलते थे, प्यार से रहते थे, लेकिन आजकल लोगों के पास समय नहीं होता है अपनों से भी मिलने का। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं?
0: पहले तो लोग कम थे, टीवी वगैरह नहीं था, शादी ब्याह में लोग अब जैसा कि शादी होता तो रिश्तेदार एक हफ्ता पहले से वहाँ जाके बैठ जाते थे, काम करते थे, अपना अपना जिम्मेदारी दे देते थे तो लोग करते थे, अभी जो ऐसा हो गया कि आपका जो है ना लाइफ मतलब आदमी का बिजी हो गया, कि बस जैसा दावत देने जाते थे तो लोग जैसा फैमिली का साथ में मिलना जुलना उतना नहीं हो पाता था, पहले बहुत अच्छे लोग मिलते जुलते थे, पहले का प्यार में अभी के प्यार में थोड़ा बदलाव तो आया है, ये चीज़ हम देखा है। प्यार एक ऐसा चीज़ होता है कि वो जैसा शहद होता है ना,
1: जी
0: उस तरह की भाषा बोलने से लोग बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत सही मानते हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं, ऐसा है।
1: और बच्चों को आप कौन सी ऐसी आदत अपनाने की सलाह देंगे जो उनके जीवन को बेहतर बना सके?
0: बच्चों को पहले तो मोबाइल में इतना खेलना नहीं चाहिए, इतना जाना नहीं चाहिए, बच्चों को हमेशा ही जो है स्कूल जाती है तो स्कूल में जब जाते हैं तो जो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई का ऊपर में फिर जो घर में आते हैं वो चीज़ को ध्यान से लोग देखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन जाने की कोशिश मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना आपने पढ़ने का कोशिश करो, जो टीचर स्कूल में आप क्लास में समझाती है वो चीज़ को घर में जाके आप रिपीट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, जब नहीं होता है तो आपके घर में कोई एजुकेटेड होंगे पढ़े लिखे होंगे उनसे एडवाइस लीजिए कि भाई ये चीज़ हमको समझ नहीं आता मैं थोड़ा समझा दीजिएगा, तो वो समझ सकते बच्चे। कोई भी है माँ बाप बच्चों को मीठी वाणी बोले, ज़्यादा प्रेशर डालने से बच्चे का माइंड होता है, प्यार से आप बच्चे अपना बेटा या बेटी को समझाएंगे तो ज़्यादा समझेंगे।
1: और चलते चलते हमारे युवाओं और समाज के लिए आपका स्नेह भरा संदेश क्या होगा? क्या कहना चाहेंगे हमारे समाज से आप?
0: मेरा तो अनुभव यह है कि जब आदमी रिटायरमेंट हो जाता है तो जो बुजुर्ग जो होता है उसको घर में बैठे नहीं रहना चाहिए, उसे हमेशा चलते फिरते रहना चाहिए और अपना घर का जो काम धाम है वो तो करते रहना चाहिए, वो करने से क्या होता है उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है माइंड भी अच्छा रहता है, ज़्यादा काम करने से तो परेशानी उनको भी लगता है, और बच्चे भी जो है वो बुज़ुर्गों से सीखे, बुज़ुर्ग जब सही करेंगे तो बच्चे उनको देख कर सही मार्ग भी जाएंगे, सही मार्ग सही दिशा सही रास्ता में लोगों बच्चों को या इंसान आदमी चले।
1: श्रोताओं, आज की बातचीत में हमने केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं सुनी बल्कि एक पूरे दौर की झलक देखी। रतिन लाल जी, आपने हमारे साथ अपने जीवन के कई खूबसूरत पन्ने साझा किए। आप समय निकाल कर स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी, शर्तों को भी सुनने वालों को भी धन्यवाद।
1: श्रोताओं, याद रखिए, बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, लेकिन उसकी यादें हमेशा साथ रहती है। इन्हीं खूबसूरत यादों के साथ आज के इस कार्यक्रम से सोनिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: यादें।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे बुजुर्ग नागरिकों के लिए कार्यक्रम बीती यादें के अंतर्गत श्री रतिन लाल से की गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थी सोनिया कुमारी, प्रस्तुतकर्ता थी मीना प्रकाश। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए लेखक शिवशंकर वरिष्ठ की लिखी झलकी, बदले हुए चेहरे।

0: बस बस बस बस हम जान गए ना, बंद हो जाओ, हमारे कानन में रोई ना ही ठूसी है, हम सुनत हई। बाबूजी बाबूजी सरकार सरकार सवेरा हो गए, सब जागत है।
1: अरे अखबार लाया?
0: अब लाए थे सरकार।
1: तुमसे कितनी बार कहा है कि अखबार इस टेबल पर रख दिया कर, पर तू रोज भूल जाता है।
0: माफी सरकार माफी।
1: घनश्याम तुझे इतने दिन काम करते हो गए पर सलीका नहीं आया। जा, अरे खड़ा मुंह मेरा मुंह क्या देख रहा है, भाग कर अखबार ले आ जा। और हाँ सुन, चाय बनाई है?
0: चाय तैयार है सरकार।
1: जा ले आ, और देख वो रेडियो वाला बटन घुमाते जाना, समझा?
0: समझ गया सरकार, समझ गया।
2: शर्माती अखियां देखे न जाने क्या सपना।
1: इस नौकर ने तो परेशान कर दिया है, अब फुल वॉल्यूम पर रेडियो लगाकर चल दिया। सब काम खुद ही करने पड़े तो नौकर रखने का क्या फायदा।
0: चाय ले आ सरकार।
1: इधर रख दे और तू भाग यहाँ से।
0: सरकार रेडियो में गावत रहल, आप हुकुम दो तो।
1: मैंने कहा रेडियो नहीं लगाना है, जो अपना काम करो।
0: नहाय पानी तैयार कर दे सरकार।
1: अरे अभी नहीं, आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है।
0: आज छुट्टी रहल सरकार।
1: हाँ छुट्टी है पर तेरी नहीं, समझे? देखो कहीं उस दिन की तरह चुपचाप सिनेमा देखने नहीं खिसक जाना, वरना नौकरी से निकाल दूंगा, समझे?
0: समझ गए सरकार, समझ गए।
1: सुनो चाय का पानी और रख दो, नरेश जी आने वाले। देखो शायद वो आ गए।
3: देखिए
1: मिस्टर नरेश, नमस्कार नमस्कार
3: नमस्कार। अच्छा तो आज ये तेवर हैं?
1: नहीं नहीं ये बात नहीं है यार।
3: अरे भाई घनश्याम, चाय जल्दी तैयार करो, हम आ गए हैं। क्षमा करना महोदय, विशुद्ध भारतीय पेय के बिना आपसे बात करने का कुछ मूड नहीं बनता।
1: तो घबराने की क्या बात है घनश्याम? अरे भाई जल्दी चाय ले आ। हाँ सुनाओ भाई नरेश, कवि सम्मेलन कैसा रहा?
3: बस कुछ ना पूछो, कल तो कल ही था यार। लोगों ने वो समा बांधा कि कॉलेज के लड़के लड़कियां ही क्या पत्थर की दीवारें तक हिलती नजर आ रही थी।
1: अच्छा तब तो खूब तालियां बजी होंगी।
3: तालियां, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट वाली तालियां। तालियों की क्या बात करते हो मिस्टर प्रकाश, ऑटोग्राफ लिए जा रहे थे, ऑटोग्राफ। पर ये तो बताओ कल तुम कहां गायब हो गए थे?
1: यार मेरे सर में दर्द था, घंटा समाप्त होते ही मैं तो सीधा घर आ गया।
3: प्रकाश कल तुम होते तो जलकर बिजली के बल्ब बन जाते।
1: अच्छा ये क्यों नहीं कहते कि हमारे होने से तुम्हारी लीडरी की शान और बढ़ जाती?
3: देखो प्रकाश, मैंने कई बार कहा है कि मुझसे ये लीडरी की बात मत किया करो। अरे कहां कल्पना की अगाध लहरियों में कीड़ा करने वाला कवि, और कहां ये सूखे पेड़ के ठूठों जैसी नीरस उलझनों में उलझा लीडर।
1: अरे भाई तो नाराज क्यों होते हो, हम तो भाई तुम्हें लीडरों से भी बड़ा मानते हैं।
3: तुम्हें मानना ही चाहिए, इतनी छोटी उम्र में मैंने जितना लिखा है प्रकाश, उतनी उम्र में किसी लीडर ने इतना सोचा भी नहीं होगा।
1: भाई ये तो नहीं मैं कह सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि नौजवानों की जितनी तालियां तुम्हारी कविता पर बजती हैं, उतनी किसी पक्के गाने पर भी नहीं बजती।
3: प्रकाश तुम हमेशा कवि की खिल्ली क्यों उड़ाते हो? प्रकाश ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि कवि ही संसार का आदि पुरुष है, उसकी कल्पना शक्ति के सहारे ही सृष्टि का विकास हुआ है, प्रकृति को

0: सुषमा मिली, प्रेम का वरदान मिला।
1: लो
0: ओ लाओ घनश्याम,
1: देखो पहले साहब को दो।
2: ले साहब चाय,
1: लो भाई चाय पियो। है मीठा ठीक है ना? नरेश तुम्हारी बातें सुनने में भी काफी मीठी लगती हैं, पर यार ये लॉजिक के हिसाब से इनका कोई सिर पैर नहीं होता।
0: फिर वही लॉजिक भाई, मैं कहता हूं कि लॉजिक की किताबें पढ़ पढ़ के तुम खुद लॉजिक का एक नमूना बन गए हो।
1: मैं
0: मियां जीवन की सुंदरता बहुत बड़ी नियामत है, उस सुंदरता को देखो, पक्षियों के कलरव को सुनो, सरिता का गीत गाते हुए सागर

0: पढ़ पढ़ के तुम खुद लॉजिक का एक नमूना बन गए हो।
1: मैं?
0: मियां, जीवन की सुंदरता बहुत बड़ी नियामत है। उस सुंदरता को देखो, पक्षियों के कलरव को सुनो, सरिता का गीत गाते हुए सागर में लीन होना देखो, चांद और सितारों के आंसुओं की कीमत जानने की कोशिश करो, फिर तुम्हें मालूम होगा कि कविता क्या चीज है, व्यथा कैसी होती है, प्रेम किसको कहते हैं।
1: क्षमा कीजिए कवि जी, भाई मैं इस मूर्खता भरे संसार से अलग ही रहना ठीक समझता हूँ। आग की जलती हुई लपटों के सामने खड़े होकर मैं गर्म होना नहीं चाहता, मैं तो जिंदगी की हकीकतों का कायल हूँ।
0: हाँ, तो कविता जीवन का सत्य नहीं है।
1: भाई मेरी समझ में कविता विविता आती नहीं, अक्ल पर झूठ का पर्दा डालकर मैं उसे समझना भी नहीं चाहता।
0: इसका मतलब है कि मेरे सिद्धांत बिल्कुल झूठे हैं?
1: ये तो मैंने नहीं कहा, मैं तो इतना जानता हूँ कि परंपरा से मानी गई बात सत्य की कसौटी नहीं होती। हम कई बार अकारण झूठ बोल जाते हैं और बाद में मन में पछताते हुए भी उस झूठ को सच बताने के लिए कितने ही झूठ और बोलते हैं। तुम कवि हो इसलिए भावुक हो, और भाई मैं भावना से भाई कोसों दूर रहता हूं।
0: प्रकाश, भावना के बिना जीवन निरर्थक है।
1: नरेश, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि मैं विवाह प्रथा का भी विरोधी हूँ। समाज की बुनियाद बड़ी कमजोर है, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उसने नैतिकता की आड़ ली और विवाह की रस्म को जन्म दिया। सीधी सी बात है, नारी पुरुष की ओर खींचती है और पुरुष नारी की ओर, ये आकर्षण शाश्वत है। विवाह न होने पर भी ये रहेगा और विवाह हो जाने के बाद भी रहेगा, फिर केवल संस्कारों के अधीन होकर गलत परंपराओं को क्यों माना जाए।
0: ओ, तो इसीलिए आपने विवाह नहीं किया?
1: हाँ, और करूंगा भी नहीं। नरेश,
0: तुम भटक रहे हो प्रकाश।
1: क्यों?
0: अलका की तिरछी नजरों ने तुम्हें प्रेम के पवित्र आसन से नीचे गिराकर वासना की कीचड़ में फेंक दिया है।
1: ऐसी बात
0: नहीं, इसलिए तुम कविता की सत्य को नहीं देख सकते, नैतिकता की ऊंचाई को नहीं समझ सकते। तुम कहते हो कि मेरी अक्ल पे पर्दा पड़ा, और मैं कहता हूँ कि आंखें रहते हुए भी तुम अंधे हो, बुद्धि रहते हुए पागल। मुझसे पूछो, मैंने विवाह किया है, प्रेम की पवित्रता को समझा है, और ये सब मैंने किसी दुर्बलता को छुपाने के लिए नहीं किया, झूठी नैतिकता के लिए नहीं किया। झूठ को मैं जीवन का कोड़ समझता
1: हूं। और मैं भी झूठ को पसंद नहीं करता, और इसलिए मैंने अपने विचार तुम्हारे सामने रख दिए। सत्य कड़वा होता है, शायद मेरे विचार भी तुम्हें कड़वे लगे हो। मिस्टर नरेश, मिसल का मुझे पसंद है, वो भी मुझे पसंद करती है, इस आकर्षण को मैं किसी रस्म रिवाज का कायल नहीं मानता। मियां, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, उसे खुलकर खेलने दो और बखेड़ों में मत बांधो उसे, समझे?
0: क्या मिस अलका को तुम्हारे इन विचारों का पता है?
1: भाई अभी तक ये जानने की मैंने कभी कोशिश नहीं की।
2: और आपको इसकी कोशिश करनी भी नहीं चाहिए।
1: अलका जी?
2: जी हाँ, आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है?
1: भाई आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है, सुबह ही सुबह अचानक आपको यहाँ देख कर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा।
2: यकीन नहीं हो रहा? बला अचानक ही आती है मिस्टर प्रकाश।
1: बला? भाई खूब, मैं तो कहूंगा कि ऐसी हसीन बला हमेशा हमारे घर आए। भाई वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं।
0: सुभान अल्लाह, भाई वाह, ताज्जुब है, तुम और ये शेर।
1: ये तो सब मिस अलका की खातिर। घनश्याम
3: आवत है सरकार।
1: अबे आ नहीं जल्दी से, 3 कप चाय बना ला गर्मा गर्म।
2: कष्ट ना कीजिए, मैं चाय नहीं पीती।
0: आप सोसाइटी गर्ल होकर भी चाय नहीं पीती?
2: क्यों, सोसाइटी गर्ल के लिए क्या चाय पीना जरूरी है?
0: क्षमा कीजिएगा, मेरा मतलब था।
2: अपना मतलब अपने पास ही रखिए, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए।
1: मिस अलका का गुस्सा बड़ा खतरनाक है मिस्टर नरेश।
2: मिस्टर नरेश, आप हमेशा सच बोलते हैं।
0: जी कोशिश तो करता हूँ।
2: झूठ को आप जीवन का कोड समझते हैं?
0: जी हाँ, पर आप ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रही हैं?
2: नहीं समझे?
0: जी नहीं।
2: ओ, तो कवि जी दूध पीते बच्चे हैं अभी तक?
0: क्या मतलब?
2: बनिए मत मिस्टर नरेश, बड़ी बड़ी कविताएं लिखकर आदर्शवाद का ढोल पीटकर कोई महाकवि नहीं बन सकता। ऊंची ऊंची बातें बनाने और सिद्धांतों की दुहाई देने मात्र से कोई नैतिक पुरुष नहीं बन जाता। कहिए, किस आधार पर आपने कला एकेडमी से सहायता मांगी थी? इसी पर ना कि आपकी भोली भाली मासूम पत्नी है? आप साहित्य के द्वारा देश की सेवा करना चाहते हैं। कला एकेडमी यदि आपकी पत्नी को आर्थिक सहयोग दे तो आप ये कार्य निर्विघ्न रूप से कर सकते हैं। मैं पूछती हूँ, कहाँ है आपकी पत्नी? बोलिए, बोलिए ना, चुप क्यों है?

0: नीचे क्यों लटकाए हुए बैठे हैं? कह दीजिए आसानी से गांव में है, अपने मैके में है। खूब सोसाइटी को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है आपने। देखिए ये रही चिट्ठियां उड़ी, जो आज भी आपके गुनाहों पर खून के आंसू बह रही है। जवानी के मंजिल पर पहला कदम रखती हुई किसी कुमारी का जीवन बिगाड़ा है आपने। कविता की मीठी बानी में आपने जहर दिया है। कह दीजिए ये सब झूठ है। झूठ को आप जीवन का कोड़ मानते हैं। आपके द्वारा तिरस्कृत वो भोली लल्ला आज जो जीवन बिता रही है, आपकी सात्विक सांसें कलंक से बच नहीं सकती है।
1: चाय ले आए सरकार। अलका देवी नमस्ते।
0: नमस्ते। चाय वापस ले जाओ घनश्याम।
1: जी बाबूजी कह रहे हैं कि
0: मैं कहती हूँ चाय ले जाओ।
1: ले जाए थे सरकार।
0: और आप मिस्टर प्रकाश?
2: मिस अलका देवी।
0: आपका रंग अभी से क्यों पीला पड़ गया है
2: जी?
0: आप तो नारी और पुरुष के आकर्षण को शाश्वत मानते हैं, प्रेम की पवित्रता और विवाह की रस्म को ढकोसला समझते हैं, जिंदगी को लॉजिक के आधार पर तोलते हैं। क्या खूब, मैं आपकी जिंदा दिली और नेक नियति की कायल हूँ। आपकी ईमानदारी की तारीफ करती हूँ। क्या सफाई दिखाई है, और कोई नहीं मिला आपको, सिर्फ अलका ही मिली। घर में 5.5 हाथ की जवान पत्नी और 2 वर्ष का मासूम बच्चा निराश्रित छोड़कर भी आप शादी को ढकोसला बताते हैं।
2: अलका देवी,
0: आपकी नजर में खाना पीना और मौज करना तो जिंदगी है, और खिलाना पिलाना तथा अपने बीवी बच्चों को मौज मजा कराना मौत है। क्यों है ना
2: जी?
0: सूखे होठों पर जबान फेरने से काम नहीं चलेगा मिस्टर प्रकाश, इससे आपकी इज्जत का बेशरम रूप नहीं बदलेगा।
2: अलका देवी,
0: घर की देवी को छोड़कर और किसी को देवी पुकारने का अधिकार आपको नहीं। जाइए घर जाइए। साहब का सामान तैयार करो, इन्हें आज ही शाम की गाड़ी से देश जाना है।
1: आज है? संझा कर?
0: हाँ हाँ आज ही संझा के जाओ, जल्दी करो। और मिस्टर नरेश आप मेरे साथ चलिए, वो लड़की मेरे संरक्षण में आ गई है जिसे आपने छोड़ दिया था। चलिए उस गंगा जल को ग्रहण करके अपने को पवित्र कीजिए, सच्चे कवि की तरह कविता की महत्ता का मूल्यांकन कीजिए।

0: पानी तैयार कर दे सरकार।
1: चिल्ला क्यों रहा है, मैं बहरा नहीं, जब हाँ यहाँ से मेरा सर मत खा।
0: अलका देवी गुस्सा हमारे ऊपर कहा गुजा रहा था, हमारे कौन कसूर है, हम वही नौकरी न चाहिए, अब हमका मालूम हो रहा है तू अच्छा बना ही रहा।
1: घनश्याम
2: अभी आप लेखक शिवशंकर वरिष्ठ की लिखी झलकी बदले हुए चेहरे सुन रहे थे। निदेशक थे F.C. माथुर। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी पहली सभा आरंभ होगी सवेरे 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्री टिप्स, विषय रहेगा मुर्गियों में बाह्य परजीवी। इंद्रधनुष कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 6:15, विषय रहेगा धुंध।

रामचरितमानस कान आप सुनेंगे सवेरे 6:30 पर। सवेरे 6:40 पर सुनिए वतन के गीत। मौसम की जानकारी, कार्यक्रमों का विवरण से आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:40 पर। सवेरे 7:15 पर सुनिए कार्यक्रम देश रागनी। सवेरे 7:30 पर सुनिए गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 8:30। कलाकार होंगे उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल। सवेरे 9:00 आप सुनेंगे बाल जगत कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सवेरे 9:30 पर उल्लास कशालकर का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनेंगे। लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का समय रहेगा सवेरे 10:00। जनता जंक्शन कार्यक्रम का समय रहेगा दिन के 11:00। 11:30 पर सुनिए कार्यक्रम गजल।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: अंतराल के बाद।
1: जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी।
2: एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसके तहत देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जहां होगी मुख्य बीमारियों की जांच, विशेषज्ञ परामर्श आदि। साथ ही 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत, जिसमें महिला और बच्चों के पोषण, सीमित तेल और चीनी के सेवन एवं मोटापे के नियंत्रण आदि पर जोर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन के लिए चलेगी विशेष मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। एनटीपीसी की ओर से ऊर्जा संरक्षण 2026 विषय पर विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और पर्यटन निदेशालय की ओर से शहीद द्वीप में विशेष सुविधा शिविर का आयोजन किया गया।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अब इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदलना उनकी साझा जिम्मेदारी है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। मैं डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने का प्रस्ताव रखता हूं। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए एक नए और महत्वाकांक्षी एजेंडों पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समूह की अपनी कार्यप्रणाली से शुरू होनी चाहिए। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं द्वारा इस अवसर पर दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रशासन और केंद्र सरकार के कार्यालयों के अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के बीच राजभाषा हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से कई विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। पूरे पखवाड़े के दौरान राष्ट्रीय नेताओं के राजभाषा संबंधी विचार प्रकाशित किए जाएंगे। इस दौरान स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए निबंध, भाषण और स्वरचित कविता पाठ का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकन, टिप्पण, आलेखन जैसे प्रतियोगिताएं और कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह 30 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। हिंदी साहित्य कला परिषद की ओर से आयोजित हिंदी सप्ताह के समापन अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह

का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम 16 सितंबर को शाम 6 बजे परिषद के परिसर में आयोजित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, ऊर्जा संरक्षण और सुविधा शिविर। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के सहयोग से NTPC लिमिटेड द्वारा ऊर्जा संरक्षण 2026 विषय पर विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य बच्चों में ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रतियोगिता में कक्षा 5वीं से 10वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता को दो समूह में बांटा गया है, स्कूल स्तर पर विद्यालय और घर में ऊर्जा बचाएं तथा ऊर्जा संरक्षण की ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी है विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राज्य केंद्र शासित प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर विजेताओं को नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय 30,000 और तृतीय पुरस्कार 20,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 10 सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्रत्येक विजेता को 7,500 रुपये दिए जाएंगे। विद्यालयों से दोनों समूह से दो दो सर्वश्रेष्ठ चित्रों का चयन कर नोडल अधिकारी के पास 15 अक्टूबर तक जमा करने को कहा गया है। प्रत्येक समूह से चयनित शीर्ष 50 चित्रों का चयन राज्य व केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। यह प्रतियोगिता श्री विजयपुरम में 14 से 21 नवम्बर के बीच आयोजित होगा। पर्यटन निदेशालय ने उद्योग निदेशालय के सहयोग से कल शहीद द्वीप में विशेष सुविधा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस RAMP योजना के तहत जागरूकता बढ़ाना और सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करना था। शिविर के दौरान 50 लाभार्थियों ने योजना का लाभ उठाने के लिए मौके पर ही आवेदन फॉर्म भरकर MSME के तहत अपना पंजीकरण कराया। कार्यक्रम का उद्देश्य शहीद द्वीप के साफ आसमान और न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण के कारण इसे एस्ट्रो टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बनाना है। इसके तहत दूरबीन की खरीद और स्थापना के लिए लक्षित वित्तीय सब्सिडी दी जा रही है। शिविर के दौरान विभागीय अधिकारियों और KPMG टीम के सलाहकारों ने आवेदकों को दस्तावेजीकरण, पात्रता और संचालन मॉडल की जानकारी दी। इच्छुक लाभार्थी पर्यटन निदेशालय के योजना अनुभाग से आवेदन फॉर्म और विस्तृत गाइडलाइन प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन विभाग की ओर से जलवायु सक्षम तटीय मछुआरा गांव पहल के तहत डिगलीपुर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय मत्स्योत्तर प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान कोची के सहयोग से समुद्री भोजन से मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास विषय पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें कुल 25 लाभार्थी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला मछुआरों को समुद्री भोजन के प्रसंस्करण, संरक्षण, गुणवत्ता और विपणन में व्यवहारिक प्रशिक्षण देना है। खेल एवं युवा मामले निदेशालय ने शिक्षा निदेशालय और सूचना प्रचार तथा पर्यटन निदेशालय के सहयोग से आज नॉर्थ बे में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। 10 किलोमीटर पुरुष एवं महिला ओपन रेस चूनाभट्टा से नॉर्थ बे के बीच होते हुए वापस चूनाभट्टा में समाप्त हुआ। इस दौड़ में आम नागरिकों, स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग को माई भारत के संयुक्त निदेशक सुकरंजन विश्वास ने, जबकि महिला वर्ग को ग्राम पंचायत विमरलीगंज के प्रधान वेंकटराम बाबू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समापन समारोह के दौरान दोनों श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को पदक और ट्रॉफी प्रदान की गई। इस अवसर पर सहायक खेल निदेशक वीरंजित कुमार ने सभी प्रतिभागियों और सहायक अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। पौंडीचेरी विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर में आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में होंगी। पात्र और इच्छुक विद्यार्थी 15 से 30 सितंबर तक JNRM कॉलेज के परीक्षा विभाग में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। एनटीपीसी की ओर से ऊर्जा संरक्षण 2026 विषय पर विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और पर्यटन निदेशालय की ओर से शहीद द्वीप में विशेष सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचना। पहले मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि द्वीपों के कुछ स्थानों में गरज के साथ बिजली चमकेगी और हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। खराब मौसम के कारण अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। अतः मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। ये थी मौसम की जानकारी और अब जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी भारत सीमा 14 तारीख को रात 8 बजे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी अगले दिन 15 तारीख को दोपहर 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कैंबल बे 15 तारीख को सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी 15 तारीख को ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। नालंदा जलयान मंगलवार 15 तारीख को नानकौरी होते हुए कैंबल बे की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी 17 तारीख को सवेरे 8 बजे कैंबल बे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल रविवार 13 तारीख को सवेरे 6 बजे स्वराज द्वीप लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानीचंगा कल रविवार 13 तारीख को सवेरे 6:15 पर स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल ही सुबह 8:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय कल रविवार 13 तारीख को सवेरे 6:15 पर स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी कल सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बोका कल रविवार 13 तारीख को दिन में 11 बजे शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा। जलयान की वापसी कल ही दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी कल रविवार 13 तारीख को दिन में 11:30 पर स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान की वापसी शहीद द्वीप से दोपहर बाद 3:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी।

जलियानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ। जन सूचनाएं। आकाशवाणी श्री विजयपुरम ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट यानी प्रसारण सहायकों के पैनल तैयार करने हेतु चयन परीक्षा आयोजित करेगा। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दक्षता तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। 31 अगस्त को उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन योग्यताओं को पूरा करने वाले एवं श्रीविजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म आकाशवाणी के ड्यूटी रूम से प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। प्रसारण सहायक के रूप में चयन भविष्य में किसी भी नियमित रोजगार का अधिकार प्राप्त नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क कर सकते हैं। जनसूचना समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और लीजिए सुनिए अलका याग्निक और साथियों की आवाज में सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है उत्तम सिंह ने।

रानी मलिक का लिखा, आनंद राज आनंद का संगीतबद्ध किया। श्रोताओं सुनिए फिल्म होते होते प्यार हो गया, फिल्म का ये शीर्षक गीत अलका याग्निक की आवाज में।

श्रोताओं, इसी के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवाणी कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना ही असली परीक्षा है। कई बार मेहनत करने के बाद भी परिणाम तुरंत नहीं मिलता और तब मन में निराशा आने लगती है। ऐसे समय में याद रखना चाहिए कि बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह मेहनत का परिणाम भी अपनी गति से आता है। जरूरी नहीं कि हर प्रयास तुरंत सफलता दे, लेकिन हर प्रयास हमें कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। इसलिए असफलता को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, उसे अपनी अगली सफलता की तैयारी बनने दीजिए। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार यानी आज के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के प्रति जागरूक करना और आपातकालीन स्थिति में सही समय पर सहायता देने के लिए प्रेरित करना है। दुर्घटना, चोट, जलने या अचानक स्वास्थ्य समस्या होने पर डॉक्टर या एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले दी गई उचित प्राथमिक सहायता बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस दिन प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण लेने, आवश्यक सावधानियों को समझने और दूसरों की मदद करने की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। सही समय पर दी गई प्राथमिक चिकित्सा किसी की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

0: दोस्तों, आज माह का दूसरा शनिवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम ऐसा भी होता है।
1: ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है।
0: दोस्तों, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग महासागरों से ढका है, लेकिन समुद्र की गहराइयों के बारे में हमारी जानकारी अभी भी सीमित है। गहरे समुद्र में सूर्य का प्रकाश लगभग नहीं पहुंचता, फिर भी वहां अनेक अद्भुत जीव पाए जाते हैं। कुछ जीव अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे बायोल्यूमिनेसेंट कहा जाता है। समुद्र की गहराई आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य और खोज का विशाल संसार है।

दोस्तों, बांस दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है। बांस की कुछ प्रजातियां अनुकूल परिस्थितियों में एक दिन में कई दर्जन सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। यही कारण है कि बांस का उपयोग निर्माण, कागज, फनी और अनेक पारंपरिक वस्तुओं में किया जाता है। यह मिट्टी को बांधने और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में भी मदद करता है।

दोस्तों, आसमान में तैरते हुए बादल देखने में हल्के और रुई जैसे लगते हैं, लेकिन एक सामान्य बड़े बादल में लाखों लीटर पानी की बूंदें या बर्फ के छोटे छोटे कण मौजूद हो सकते हैं। फिर भी बादल हवा की धाराओं के कारण आकाश में बने रहते हैं। जब पानी की बूंदें पर्याप्त बड़ी और भारी हो जाती है, तो वे वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है।

दोस्तों, मधुमक्खियों का संसार भी बेहद अद्भुत है। काम करने वाली मधुमक्खियां भोजन का अच्छा स्रोत मिलने पर छत्ते की दूसरी मधुमक्खियों को उसकी दिशा और दूसरों के बारे में संकेत देती हैं। इसके लिए वे विशेष प्रकार की गतिविधियां करती हैं, जैसे वैज्ञानिक वंगल डांस करते हैं, यानी मधुमक्खियों के लिए नृत्य केवल गतिविधि नहीं बल्कि जानकारी साझा करने का माध्यम भी है।

0: क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने ज़िले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

श्रोताओं, अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम।

दिल है कि मानता नहीं। श्रोताओं सुनिए इस फिल्म का गीत कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। फैज अनवर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

0: मेरा का मोहन श्रोताओं, आपने सुना इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में। इंदिवर के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला था अरुण पौडवाल ने।
1: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG with 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom. Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG with 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
0: आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा रहे हैं नाचने गाने वाले फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत को सुरों में पिरोया है बप्पी लहरी ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अंतर्गत पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्री विजयपुरम द्वारा योग्य भारतीय नागरिकों से पायलट ऑफिसर के एक पद पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित अभ्यर्थी को 2,50,000 प्रति माह का कंसोलिडेटेड सैलरी दिया जाएगा। पायलट ऑफिसर पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना रिज्यूम 20 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक जमा करना होगा। रिज्यूम चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्री विजयपुरम 744101 के पते पर भेजना होगा। अभ्यर्थी अपना रिज्यूम ad.pmb@and.nice.in पर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अभ्यर्थियों को असिस्टेंट डायरेक्टर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों की एक एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन 1 सितंबर 2026 से सभी कार्य दिवस में दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक किया जाएगा। शनिवार और रविवार को वेरिफिकेशन नहीं होगा। इस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अनुभव आयु सीमा तथा अन्य पात्रता मानदंड की विस्तृत जानकारी अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के वैकेंसी अनाउंसमेंट सेक्शन में उपलब्ध वैकेंसी नोटिस से प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आइए सुनते हैं गौरव कान के अंतर्गत कुछ देशभक्ति गीत।

0: for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC applies.

इसी के साथ गौरव गान कार्यक्रम अभी ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालेंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के ग्लोबल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड अब प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी

0: एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क

0: प्रायोरिटीज और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
1: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
0: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: I would like to say that the outcome document,
3: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
2: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
1: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
4: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam.

0: New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आर्यना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आर्यना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति को अगर किसी एक शब्द में समझना हो तो संभवतः वो शब्द होगा जीवन। हम किन परंपराओं को सजोते हैं, किन नदियों के किनारे अपनी स्मृतियां छोड़ते हैं, किन पर्वों में सामूहिक उल्लास के रंग भरते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या गाते हैं, किस भाषा और बोली में अपनी पीड़ा दर्ज करते हैं, इन सब में हमारी संस्कृति सांस लेती है। और इसीलिए भाषा भी केवल संवाद का माध्यम नहीं है। भाषा में हमारी स्मृतियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी जीवन दृष्टि है। जरा सोचिए, हमारी दादी नानी की कही कोई पुरानी बात, गांव की कोई लोक कथा, किसी त्योहार का गीत, किसी रिश्ते को पुकारने का अपना अलग ढंग, क्या ये महज शब्द है? नहीं, इन शब्दों में एक पूरी जीवन पद्धति होती है। एक समाज, उसकी स्मृतियां, उसकी परंपराएं और उसकी संवेदनाएं। दरअसल भाषा और बोलियां संस्कृति की सबसे जीवंत आवाज हैं। हम जैसा जीते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हमारे देश की खूबसूरती ही इसकी विविधता है। यहाँ भाषा बदलती है तो उसके साथ लोक बदलता है, लय बदलती है, संबोधन बदल जाते हैं, लेकिन भावनाओं की धड़कन वही रहती है। हिंदी की अपनी खूबसूरती भी इसी में है कि उसने इस विविधता से संवाद किया। अलग अलग भारतीय भाषाओं, बोलियों और लोक परंपराओं से शब्द और भाव ग्रहण किए, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं से भी। इसीलिए हिंदी कोई बंद कमरा नहीं, बल्कि कई दिशाओं से आती हुई सांस्कृतिक हवाओं के लिए एक खुली खिड़की है। और जब कोई भी भाषा संस्कृति को अपने भीतर समेटती है तो वो सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं रहती, वो हमें अपने होने का अर्थ भी बताती है। भाषा से संस्कृति की ओर और संस्कृति से प्रकृति की ओर, अब एक ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता केवल पैरों से नहीं स्मृतियों और संवेदनाओं से भी तय होता है। नर्मदा, जिसे भारत की जीवनदायिनी नदियों में से एक माना जाता है, जिसके तटों पर सभ्यताएं, लोक विश्वास और अनगिनत कथाएं आकार लेती रही हैं। विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में सुनिए प्रख्यात चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ के स्वरों में उनकी नर्मदा परिक्रमा के वृत्तांत का एक अंश, तीरे तीरे नर्मदा।
1: हम लोग नर्मदा पद यात्रा कर रहे थे और अमरकंटक जा रहे थे। छिनगांव का कुआं गांव के बाहर एक घाटी में था। मेरे साथी बड़े सवेरे वहां जाकर नहाए। मैं गया जरूर पर नहाया नहीं, ठंड के कारण हिम्मत ही न हुई। मन को समझाया, नहाऊंगा तो नर्मदा में, कुओं तालाबों पर नहीं। कै हंसा मोती चुगे, कै भूखे रही जाए। छिनगांव से बरछा, कच्ची धूल भरी सड़क से उतरने लगे तो नीचे दूर मैदान में से बहती हुई धूप नहाई नर्मदा दिखाई दी। अब प्रायः अमरकंटक तक नर्मदा मैदान में से ही बहती है। पंचमनाथ पुजारी जब 48 बरस का था तभी पत्नी का देहांत हो गया था, अभी 70 का है और पूरी तरह से स्वस्थ है। कहता है, मैं बाहर भी हूं और भीतर भी हूं। अगर हम लोग भी बीच बीच में भीतर चले जाया करें और देखते रहें कि कहीं हमारी आत्मा को फफूंद तो नहीं लग गई तो कितना अच्छा हो।

0: दूसरे दिन भी लगातार पानी बरसता रहा। हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन किसानों को कई दिनों से इस वर्षा की प्रतीक्षा थी। उनकी फसल सूख रही थी, उसे नया जीवन मिला। वैसे किसानों को इससे कहीं अधिक पानी की जरूरत थी। बादलों को आकाश से नीचे उतारने की विद्या केवल वनों को आती है, और हम अपने अधिकांश वन काट चुके हैं। अब बादलों को आकाश की अटारी से नीचे धरती पर भला कौन उतारे। रात लुकामपुर में रहे। रात्रि के अंतिम प्रहर में ओस गिरनी शुरू हो गई थी। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से ओस की बूंदनियां, सवेरे घना कोहरा। कोहरे के छटने का काफी इंतजार किया, लेकिन छटा नहीं तो कोहरे और ओस की फुहार में ही चल दिए। चलते चलते आसपास के सौंदर्य को मन में उतारता जाता, सोचता क्या इस सौंदर्य की गूंज अपनी कृतियों में पैदा कर सकूंगा। लेकिन इसकी चिंता अभी क्यों करूं, अभी तो इसका भरपूर आनंद लूं, अपने हृदय में उतार लूं और पकने के लिए वहीं छोड़ दूं। समय आने पर वह स्वयं बाहर आएगा, इसमें समय लगता है। अगर मैं कलाकार हूं तो मुझ में धैर्य होना चाहिए। दोपहर को खाना नहीं बनाते, लेकिन रामघाट के प्रपातों को देखकर लगा कि आज खाना यही बने। देर तक मैं उन प्रपातों के पास मड़राता रहा। शाम तक दूधी संगम पहुंच गए, लेकिन एक ग्रामीण ने कहा कि आप दूधी पार करके हर्रा जाइए, वहां कहीं न कहीं रहने की व्यवस्था हो जाएगी। आधी रात को आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्र था, चंदन का घाट और पूनो का चांद। अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान मुझे कई पूर्णिमाएं देखने का अवसर मिला है, और हर बार मैंने नई नई उपमाओं से चांद और चांदनी का वर्णन किया है। सवेरे आगे बढ़े, बसंतपुर और कंचनपुर होते हुए ठाड़ पातर पहुंचे। इस बार की यात्रा में एक सुखद परिवर्तन देखने मिला। अधिकांश गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खुल गई हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जहां भी शाला मिली हम वहां जरूर गए, और शिक्षक से अनुमति लेकर मैं बच्चों को नर्मदा के बारे में बताता। अगर बच्चे जरा बड़े होते तो अपनी पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा में से उनके गांव से संबंधित अंश पढ़कर सुनाता। नर्मदा तट के कई गांवों में मैंने बच्चों के समक्ष रचना पाठ किया, उसी निष्ठा से जिस निष्ठा से नवंबर 2001 में भोपाल के भारत भवन में साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के समक्ष किया था। ठाड़ पाथर की पाठशाला को देखते ही मेरी बांछें खिल गईं। प्यारे बच्चों, हर बच्चे को सबसे अधिक प्यार अपनी माँ से होता है, माँ के बिना वह रह नहीं सकता। इससे हुआ यह कि जो भी चीज हमें बहुत प्यारी होती है उसे हम माँ कहने लगे। जैसे हमारा देश, हम उसे भारत माता कहते हैं। इसी प्रकार यह जो नर्मदा बह रही है ना, वह हमें इतनी प्यारी लगती है कि हम उसे भी माँ कहते हैं, नर्मदा मैया। बच्चों, तुम कितने भाग्यवान हो कि नर्मदा की गोद में पल बढ़ रहे हो। पता नहीं बड़े होकर तुम इसी गांव में रहोगे या और कहीं जाओगे। जहां भी जाओ अपनी इस नदी को कभी मत भूलना। तुम जहां भी जाओगे इस नदी का एक अंश तुम्हारे साथ जाएगा।
1: ये थे चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी जबलपुर। देश के मध्य में नदी की धारा से अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां संस्कृति केवल उत्सव नहीं, समुदाय की सामूहिक स्मृति और प्रकृति के साथ उसके रिश्ते की अभिव्यक्ति है। मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसने वाला गारो समुदाय सूर्य देवता को समर्पित जिस उल्लासपूर्ण नृत्य उत्सव के साथ अपनी सामुदायिक जीवन ऊर्जा को व्यक्त करता है, वो है वांगला। और इसी वांगला के लोकरंग को समेटे है हमारी अगली प्रस्तुति, ये लघु रूपक आशीर्वाद मिसी साजोंग का।

0: हरे भरे पहाड़, बादलों से घिरा आसमान और इसके बीच गूंजती ढोल की सामूहिक थाप। ये है मेघालय का गारो समुदाय का वांगला, एक ऐसा लोक उत्सव जिसमें संगीत है, नृत्य है और प्रकृति के प्रति आभार की भावना भी।
1: भारत के पूर्वोत्तर की जनजातीय परंपराओं में गारो समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान है। गारो समुदाय मुख्य रूप से मेघालय में निवास करता है। हालांकि असम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी इनकी बसावटें हैं।
0: वांगला फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला पारंपरिक उत्सव है। ये मूलतः गारो समुदाय के सूर्य देवता मिसिशाल्जो के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि के उत्सव का अवसर है।
1: और इसकी सबसे खास पहचान है ढोल की सामूहिक थाप। शायद इसी वजह से वांगला को कहा जाता है 100 ढोलों का उत्सव।
0: इस जीवन परंपरा की खूबसूरत झलक इस साल दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट फेस्टिवल यानी नेस्ट फेस्ट 2026 में भी देखने को मिली।
1: लेकिन आखिर वांगला नृत्य की खासियत क्या है? इसकी प्रस्तुति में कौन सी लय और भाव छुपे हैं?
2: मेरा नाम अनालिशा है, मैं मेघालय से हूँ, गारो ट्राइब से। तो ये हमारा वांगला डांस जो है वो एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू करा था। जो ट्राइब है मेघालय की, उसका एक गॉड है जो कि हम बोलते हैं मिसिशाल्जो, जो कि सन के गॉड हैं। तो हम उनको हमारी अच्छी हार्वेस्ट को प्रेज करने के लिए या फिर वर्शिप करने के लिए हम ये वांगला डांस परफॉर्म करते हैं। 100 ड्रम्स वांगला, ये एक फेस्टिवल है, इस पे हम वांगला परफॉर्म करते हैं। हमारा जो ड्रम्स होता है, हम खुद ड्रम्स बजा के हम डांस करते हैं। जो लड़के लोग होते हैं वो ड्रम्स, हमारे ड्रम जो होते हैं उसको दामा बोलते हैं, लंबे ड्रम होते हैं, वो लड़के लोग डांस के टाइम पे उसको कैरी करते हैं और वो बजाते हैं उस टाइम पे, तो वही हमारा इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक हो जाता है।
0: पारंपरिक दामा ढोल की थाप पर जब कलाकार एक साथ कदम मिलाते हैं तो जैसे पूरी प्रस्तुति में एक लय सी दौड़ जाती है।
1: ढोल की यही धुन वांगला को गति देती है, 100 ढोलों के उत्सव की पहचान भी देती है।
0: वांगला की खूबसूरती सिर्फ इसके लय और कदमों में नहीं, इसके रंगों में भी दिखाई देती है। पारंपरिक वेशभूषा के रंग बिरंगे परिधान और आभूषण इस नृत्य को एक अलग विजुअल पहचान देते हैं।
1: आइए सुनते हैं अनालिशा को।
2: जब हम ये डांस परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली हम लोग अपना ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं। ट्रेडिशनल अटायर जैसे कि हम लोग सर पे बांधने का कपड़ा पहनते हैं, रैप अराउंड स्कर्ट होता है। मैं अगर गारो में बोलना चाहूँ तो एक दोमे होता है, दोमे जो होता है वो हम सर पे लगाते हैं, वो मुर्गी के पंख होते हैं, और एक खोतप होता है वो हम सर पे बांधते हैं, कपड़ा जैसा होता है। तो फिर हम इयररिंग्स भी पहनते हैं, उसको हम नाथापसी बोलते हैं, और नेकलेस भी पहनते हैं, लंबे लंबे नेकलेस, उसको हम रुकतुक बोलते हैं या फिर रुकमाचू। और हम जो बेल्ट पहनते हैं उसको हम सेंखी बोलते हैं, और जो हम हाथ में जो चूड़ियां पहनते हैं उसको हम जक्सान बोलते हैं। हाँ, और जो हम नीचे जो रैप अराउंड स्कर्ट पहनते हैं उसको हम नकमंदा बोलते हैं।
1: इस पूरी प्रस्तुति का नेतृत्व करने वाला एक खास कलाकार भी होता है जिसे कहा जाता है मदग्रिक। आइए सुनते हैं रियोशन से।
3: तो जो मदग्रिक का जो ड्रेस है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा वॉरियर होता है जो अपने कम्युनिटी को लीड करेगा। तो उसका जो कपड़ा होता है उसका पंडरा होता है, जो वो गामचा की तरह उसको पहना जाता है, उसको पंडरा कहते हैं, और इसको रुकमाचू कहते हैं, जो हम गले में पहनते हैं उसको रुकमाचू कहते हैं। और उसके बाद हम डोमे भी पहनते हैं। डोमे बेसिकली जो बर्ड है, वाइल्ड बर्ड्स से उनको बनाया जाता है।
0: तो ये है गारो समुदाय का वांगला, जहाँ ढोल की हर थाप में उत्सव की खुशी है, हर कदम में सामूहिकता की लय है और हर रंग में अपनी संस्कृति पर गर्व।
1: समय बदला, जीवन शैली बदली, लेकिन वांगला की थाप आज भी गूंज

0: भी है, अपनी परंपरा, अपनी पहचान और अपनी जड़ों को साथ लेकर। संस्कृति भारती के लिए मैं हूँ प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
2: आशीर्वाद मिसी सालजोंग का गारो समुदाय के वांगला नृत्य उत्सव पर केंद्रित लघु रूपक अभी आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। लोक से शास्त्र, परंपरा से पर्व और अब गणपति बप्पा की भक्ति और उत्सव धर्मता के रंग। भारत के अलग अलग हिस्सों में पर्वों की अपनी अपनी छवियां हैं, अपनी ध्वनियां हैं, अपनी परंपराएं हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव तो जैसे सार्वजनिक जीवन और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा ही है। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति गणपति बप्पा मोरया।

0: पुणे का गणेशोत्सव आज जिस तरह से पूरे जोश और उत्साह से मनाया जाता है, उसकी शुरुआत के पीछे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बड़ा योगदान है। सन 1893 में लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। उस समय गणपति की पूजा ज्यादातर घरों में ही होती थी। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव के बहाने लोगों को एक साथ लाया। गणेशोत्सव को उन्होंने अनंत चतुर्दशी तक मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पूजा के साथ भजन, कीर्तन, भाषण और तरह तरह के कार्यक्रम भी होने लगे। उस समय देश अंग्रेजों के शासन में था, इसलिए इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों में जागरूकता और देश के लिए कुछ करने की भावना भी पैदा होने लगी। शुरुआत में सन 1893 में पुणे में 3 और मुंबई में 2 जगह सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया गया था। धीरे धीरे यह उत्सव पुणे से निकलकर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों तक और अब तो सारे देश में ही नहीं विदेश में भी पहुंच गया है। पुणे के गणेशोत्सव की एक खास पहचान है यहाँ के प्रतिष्ठा प्राप्त 5 गणेश, जिसे मराठी में मानाचे 5 गणपति कहते हैं। इनमें श्री कस्बा गणपति को पुणे का ग्राम दैवत माना जाता है।
1: नमस्ते, मैं नीलेश वकील कार्याध्यक्ष, मैं बात कर रहा हूँ पुणे के प्रथम नामांकित मंडल से, श्री कस्बा गणपति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल से। 1893 में यानी 1893 में ये गणेशोत्सव मंडल की हमारे स्थापना हुई और तब से ये उत्सव चलते आ रहा है। पहला मान विसर्जन का यानी पहला नंबर हमको दिया जाता है। गणेशोत्सव क्या है तो कलावंत, विचारवंत, बुद्धिवंत इन लोगों का उत्सव यानी गणेशोत्सव, यानी सब लोग आके ये उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। गणेशोत्सव की और एक खासियत है कि सामाजिक काम यानी सोशल वर्क। इसी तरह से हम लास्ट 25 साल से ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं।
0: इसके बाद तांबड़ी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुलसीबाग और केसरीवाड़ा के गणपति आते हैं।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित तिलक, मैं अध्यक्ष हूँ केसरी गणेश उत्सव का। अलग अलग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं केसरीवाड़ा में, कोई लेक्चर्स हो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स रखे जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स रखी जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है। ऐसे पूरे 10 दिन कार्यक्रम केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से किया जाता है। अगर कोई प्रेजेंट

0: इशू हो तो उसके ऊपर भी लेक्चर्स ये तीसरे गणेशोत्सव के माध्यम से हमेशा कंडक्ट किया जाता है।
1: गणपति की स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी के विसर्जन तक पूरा शहर जैसे उत्सव में डूबा रहता है। कहीं ढोल ताशों की गूंज सुनाई देती है तो कहीं सुंदर सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई देते हैं।

0: श्रीमंत दगरुशेठ गणपति के बारे में हेमंत रास ने बताते हैं।
1: जय गणेश। श्रीमंत दगरुशेठ हलवाई सार्वजनिक गणेशोत्सव 135 साल यहाँ पुणे में विराजमान हो रहे हैं। अभी श्रीमंत दगरुशेठ हलवाई गणपति का परमानेंट मंदिर हो गया है। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ रहती है। उत्सव में 10 दिन में 2 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस साल हमने वृंदावन का प्रेम मंदिर यहाँ मंडप में

0: श्रीमंत दगरुशेठ गणपति के बारे में हेमंत रास ने बताते हैं।
1: जय गणेश। श्रीमंत दगरुशेठ हलवाई सार्वजनिक गणेशोत्सव 135 साल यहाँ पुणे में विराजमान हो रहे हैं। अभी श्रीमंत दगरुशेठ हलवाई गणपति का परमानेंट मंदिर हो गया है। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ रहती है। उत्सव में 10 दिन में 2 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस साल हमने वृंदावन का प्रेम मंदिर यहाँ मंडप में बनाया है, जो दगरुशेठ हलवाई गणपति के दान पेटी में जो भाविक अपना योगदान देते हैं, उससे हम मानव सेवा का महामंदिर बनाते हैं।
0: भाऊ रंगारी गणेशोत्सव के अध्यक्ष संजीव जावड़े,
2: ये जो उत्सव जो चालू हुआ वो 1892 में भाऊ रंगारी इन्होंने चालू किया उनके साथीदारों के साथ, और उन्होंने एक मूर्ति बनाई जो राक्षस को वध करती है, और ये मूर्ति इको फ्रेंडली है। और 1892 से आज तक हमारे ट्रस्ट ने किसी के पास चंदा लिया नहीं है, हम गुलाल नहीं यूज करते। और तीसरी बात, यानी हमारे जो उसमें म्यूजिक या गीत जो रहते वो भक्ति गीत रहते, और वो भी मॉडरेट लेवल नॉइस पे।
0: पुणे का गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि लोगों को साथ लेने वाला, हमारी संस्कृति से जोड़ने वाला एक खास उत्सव बन गया है।
3: गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति आपने सुनी आकाशवाणी पुणे के सौजन्य से। उत्सव हमें जोड़ते हैं और शिक्षा हमें सशक्त बनाती है। साक्षरता केवल अक्षरों को पहचान लेने का नाम नहीं, ये अपने अधिकारों को समझने, अपने निर्णय स्वयं लेने और दुनिया को नए नजरिए से देखने की क्षमता भी है। शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में अब एक ऐसी कहानी जिसने साक्षरता की उपलब्धि को एक भौगोलिक पहचान से जोड़ दिया, मिजोरम की उस यात्रा की कहानी जिसने उसे साक्षरता के शिखर तक पहुंचाया। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साक्षरता का मिजो शिखर।
4: साक्षरता का अर्थ केवल वर्णमाला पहचानना या हस्ताक्षर करना नहीं है। वास्तविक साक्षरता वो है जो नागरिक को अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और समाज के प्रति उसके योगदान का एहसास भी कराए। हाँ, शुरुआत जरूर अक्षरों की पहचान से होती है।
5: सितंबर का ये समय देश भर में पठन पाठन और गुरु परंपरा के सामाजिक महत्व पर मंथन का अवसर देता है। ये समय हमें ये देखने का अवसर भी देता है कि नीतियाँ कागजों से उतरकर धरातल पर कितना प्रभाव छोड़ रही हैं।
4: इसी उजाले की मिसाल बनकर उभरा है भारत के पूर्वोत्तर का सुंदर राज्य मिजोरम। भारत सरकार के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम ने 98.2% की कार्यात्मक साक्षरता हासिल करके देश में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है।
5: पर जानते हैं, दुर्गम पहाड़ियों और बीहड़ रास्तों के बीच बसी आबादी में इतना बड़ा बदलाव केवल कागजी दावों से नहीं होता। जब जमीन पर जाकर एक एक घर का सर्वे किया गया तो देखा गया कि आखिरी पड़ाव पर लगभग 3000 ऐसे लोग बचे थे जो अक्षरों की दुनिया से दूर थे।
4: और यहाँ मिजोरम की सांस्कृतिक चेतना का एक सुंदर रूप देखने को मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं तलांगना। जैसे ही सर्वे के आंकड़े सामने आए तो बिना किसी आर्थिक लाभ की परवाह किए लोकल वॉलंटियर्स और युवा खुद आगे आ गए।
5: इन युवाओं ने गांव-गांव जाकर अपने से बड़ों को पढ़ाना शुरू किया और एक अनोखा कम्युनिटी बॉन्ड बना, यानी तलांगना। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आधुनिक कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल को समझने के लिए आइए सुनते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल परिसर के प्राध्यापक डॉक्टर

0: छप्पनलाल रोहता को।
1: Having observed life in Mizoram closely,
2: मिजोरम में जीवन को करीब से देखने और समझने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि मिजो समुदाय का पढ़ना पुस्तकों और शिक्षा के साथ ऐतिहासिक रूप से एक गहरा और विशिष्ट संबंध रहा है। जब ईसाई मिशनरी मिजोरम आए तो उन्होंने रोमन लिपि का प्रयोग करते हुए मिजो भाषा के लिखित रूप को विकसित और प्रचलित किया। मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ने की संस्कृति केवल उच्च शिक्षित लोगों तक सीमित नहीं थी। परिवारों में मनोरंजन और रुचि के लिए पढ़ने की भी एक मजबूत परंपरा रही है। सोशल मीडिया के दौर से पहले माता पिता द्वारा बच्चे को सोने से पहले कहानियां सुनना या सुनाना काफी आम बात थी। मेरा मानना है कि मिजोरम की उच्च साक्षरता दर की जड़ें समुदाय की मजबूत सहभागिता की संस्कृति में निहित है। मिजो दर्शन में निहित त्रावमेना अर्थात बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और उनकी सहायता करना, उल्लास अर्थात समाज के सभी वर्गों के लिए आजीवन सीखने की अवधारणा, या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भी इसी सामुदायिक भावनाओं को महत्व दिया गया है। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए 95% साक्षरता को मानक माना गया है। उल्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मुझे इसमें स्वयं सेवी शिक्षकों की भूमिका लगती है। मिजोरम में इन स्वयं सेवी शिक्षकों में विद्यार्थी, शिक्षक, संसाधन व्यक्ति और क्लस्टर रिसोर्सेस सेंटर के समन्वयक शामिल रहे हैं। उन्होंने विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, वायम पुस्तकालय और आवश्यक पढ़ने पर शिक्षार्थियों के घरों तक जाकर भी सीखने सिखाने की गतिविधियां संचालित की।
1: कम्युनिटी हॉल्स, वायम लाइब्रेरीज एंड वेयर नेसेसरी इवन इन लर्नर्स होम्स एज़ वेल टू देयर ओन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट।
0: मिजोरम के पहाड़ों पर जब सुबह सुबह धुंध छटती है तो किसी घर के बरामदे में बैठा बुजुर्ग या स्कूल की ओर बढ़ती कोई छोटी बच्ची, दोनों के हाथों में एक चीज समान मिलती है, एक खुली हुई किताब। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
3: और मैं हूँ प्रांजल।
4: अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति साक्षरता का मिजो शिखर, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। विश्व के या देश के अलग अलग हिस्सों को हम समझना चाहें, उन्हें जानना चाहें, तो करनी पड़ती है यात्राएं। और इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। और पर्यटन की यही मानवीय भूमिका हमें एक दूसरे महत्वपूर्ण दिवस की ओर ले जाती है, विश्व शांति दिवस। हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में इस दिवस की घोषणा की थी और 2001 में इसे अहिंसा और युद्ध विराम के दिवस के रूप में निर्धारित किया। 2026 में विश्व शांति दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीडे, यानी शांति में निवेश हर व्यक्ति के लिए, हर जगह, हर दिन। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने विचार, कर्म, कला और जीवन से भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री नारायण गुरु, स्वाधीनता और राष्ट्र चेतना के पुरोधा दादा भाई नौरोजी और अमर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर एनी बेसेंट, महान दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और संगीत की दुनिया की दो महान स्वर साधिकाएं MS सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर, जिनके सुरों ने भारतीय संगीत को देश और दुनिया तक का विस्तार दिया। इन सभी महान विभूतियों के कृतित्व और व्यक्तित्व को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
5: आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक आनंद वैद्य का शास्त्रीय गायन। अजमेर, राजस्थान के निवासी

आनंद वैद्य जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अजमेर की श्रीमती श्यामल नवरे जी और सांगली के पंडित ए.आर. पटवर्धन जी से प्राप्त की। तत्पश्चात किराना घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित अजय पोहनकर जी के मार्गदर्शन में आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख्याल गायकी की शिक्षा ग्रहण की। पिछले 30 से अधिक वर्षों से देश के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे आनंद वैद्य सुरमणि और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के युवा शास्त्रीय गायक पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। आनंद वैद्य जी अपने कार्यक्रम की शुरुआत राग गोरख कल्याण से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल के बोल हैं धन धन भाग जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं जा जा रे जा पथिकवा जो तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अकबर हुसैन और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं राजेंद्र बनर्जी।

अभी आपने सुना राग गोरख कल्याण। आनंद वैद्य अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग जोग। विलंबित ख्याल के बोल हैं पिहरवा को बिरमायो, जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं साजन मोरे घर आए, जो तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आपने सुना आनंद वैद्य का गाया राग जोग। इसके साथ ही आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जनसेवाओं को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया गया है कि द्वीपों के एक दो भागों में गरज के साथ बिजली चमकेगी और हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और उधर मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि खराब मौसम के कारण अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हवा की गति 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। इसलिए मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 11:52 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 सितंबर सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:28 व 38 सेकंड हुए हैं। हम अपनी पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। समय प्रातः के 5:30 व 27 सेकंड हुए हैं।